0: सपने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुर दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। उत्तराखंड का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुला। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल, और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मुद्दा भी उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
3: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: दोनों देशों के बीच मुख्य रूप से व्यापार और आर्थिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, विकास सहयोग और क्षेत्रीय स्थिति पर बातचीत हुई। म्यांमार भारत का रणनीतिक पड़ोसी देश है और इसकी 1640 किलोमीटर लंबी सीमा नागालैंड और मणिपुर सहित भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों से लगी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भी श्री आउ लाइन से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। 5 दिन की भारत यात्रा पर आए राष्ट्रपति आउ लाइन व्यापार और उद्योग जगत से बातचीत के लिए आज मुंबई जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है, अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमेरिका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने 3 फरवरी को समझौते के पहले चरण की रूपरेखा घोषित की थी। रूपरेखा पर सहमति बन जाने पर 7 फरवरी को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। अब समझौते के लिए कानूनी पक्ष तय किया जाना है। अमेरिका पिछले वित्त वर्ष में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि बैठक में पिछले 12 वर्ष के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच को बढ़ाने के प्रयासों पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि हर नागरिक पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का साक्षी है। श्री पात्रा ने कहा कि आज भाजपा और एनडीए सरकार को देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सेवा का अवसर मिला है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
4: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
5: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
6: 2-3 ब्रांचेस ऑल्सो।
4: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज वाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
7: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी

0: के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है। उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी हैं। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
1: वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड में चमोली जिला स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। वन विभाग ने पर्यटकों से घाटी की समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पति संरक्षण में सहयोग की अपील की है। वर्तमान में घाटी में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और दुर्लभ वनस्पतियां मौजूद हैं। वन क्षेत्राधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि ये घाटी 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी।
3: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
2: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने आजमगढ़ जिले से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने का आरोप है। एटीएस ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल को सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी दिशा निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए वीडियो जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय के 5 नव नियुक्त न्यायाधीश आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत उन्हें शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्ला से भी संपर्क किया है। श्री ट्रंप ने बताया कि अब बेरूत की ओर सेना नहीं भेजी जा रही है और जो सैनिक रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया। हिजबुल्ला ने कहा है कि अगर इसराइल की ओर से हमले बंद होते हैं तो वो भी हमला नहीं करेगा। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: कुल 22 रोवर्स को अब टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी 6 अलग अलग नौका समूहों का हिस्सा हैं। अब ये रोवर्स एशियाई खेलों और रोइंग विश्व कप जैसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल खिलाड़ियों में पेरिस ओलंपिक 2024 के प्रतिभागी बलराज पंवार, एशियाई खेल 2022 के रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और एशियाई खेल 2022 में 2 पदक जीतने वाले जसविंदर सिंह भी शामिल हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा।

0: मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज बारिश की संभावना है। कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति रह सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित लगभग सभी हिंदी समाचार पत्रों ने अपनी सुर्खियों में आज राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को वरीयता देते हुए अंतर्राष्ट्रीय मसलों को भी मुखपृष्ठ पर जगह दी है। लोकसत्य ने पीएम स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। लाखों रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाया। दैनिक जागरण ने नए ड्रोन दिव्यास्त्र MK1 के सफल परीक्षण के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है कि 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ड्रोन लगातार 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। पत्र ने CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ी की जांच शुरू होने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की आला अधिकारियों के साथ मंत्रणा को दूसरा शीर्ष समाचार बनाया है। हिंदुस्तान ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के कथन को पहली खबर बनाते हुए लिखा है, अमेरिका से व्यापार समझौता जल्द। वीर अर्जुन ने म्यांमा के राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भेंट का चित्र सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए म्यांमा के राष्ट्रपति के बयान को सुर्खी बनाया है, भारत के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दैनिक भास्कर ने अपने संपादकीय में भारतीय रिजर्व बैंक की नीति निर्धारक इकाई के 3 से 5 जून के मध्य लिए जाने वाले फैसलों का विश्लेषण किया है। शीर्षक दिया है, महंगाई से गरीबों को बचाने पर फोकस होना चाहिए। पत्र याद दिलाता है कि पिछले 10 वर्षों में खाद्यान्नों की कीमतें इलेक्ट्रॉनिक सामान के मुकाबले ज्यादा बढ़ी हैं।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर-18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। म्यांमार प्रेसिडेंट ऊ मिन आउन क्लाइन सेज हिज कंट्री विल नॉट अलाउ इट्स टेरिटरी टू बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स। इंडिया एंड यूएस हैव फाइनलाइज्ड मोस्ट एलिमेंट्स of first phase of bilateral trade agreement, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Uttarakhand's UNESCO World Heritage Site, Valley of Flowers, opened to tourists. 22 rowers included in TOPS development group ahead of Asian Games 2026. And in hockey, India registered dominant 4-1 win over Korea in Men's Under-18 Asia Cup. Myanmar President Ou Min Aung Hlaing has assured Prime Minister Narendra Modi that Myanmarese territory will not be allowed to be used against India's security interests. The two leaders held wide-ranging talks to boost bilateral ties in trade, defence, energy and connectivity in New Delhi yesterday. Mr. Aung Hlaing is on a 5-day visit to India. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said the President of Myanmar reiterated the assurance that Myanmar's territory will not be permitted to be used against India's security interests. Mr. Misri said, Prime Minister Modi reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests.
3: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities

योजना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: ngasi akash phone le ne ju jik ta in ga do chu chu osh ko song tok ka se ta to se ta be sting ne la dar sana na sul sana zat
1: अब लद्दाख के बीएसएनएल ग्राहकों को मिलेगा तेज इंटरनेट और बेहतर नेटवर्क का फायदा, क्योंकि लद्दाख में शुरू हो चुकी है बीएसएनएल की फास्ट 4G सर्विसेज। आज ही अपने नजदीकी बीएसएनएल सीएससी या रिटेलर से अपनी 4G सिम प्राप्त करें।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: फिल्मेलू टिकरुना का सता उमराव जान फिल्मेलू आशा भोसले ने इस नजर दिन

0: Felme lui tikrim esting juk peka dak sangi sharangi Kishore Kumar tang thopa guni sel khani sharabe felmelu sanajaj ngashe akashwani lene ishun jik tangin khatu chuchu urchu sonto kaseta nyime so chukin sukpa fm gold delhi sanajaj
1: namaskar akashwani samachar ke sath main jaya bharti म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आओ लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मुद्दा उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमेरिका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। दस्ते ने बताया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आतंकवादियों की तलाश के लिए सुरक्षा बलों का संयुक्त अभियान शेरोवाली कल लगातार 10वें दिन भी जारी रहा। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम घने जंगलों में आतंकियों के ठिकानों का पता लगाने के लिए अभियान चला रही है। व्हाइट नाइट कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पी के मिश्रा ने कल नियंत्रण रेखा से जुड़े अग्रिम क्षेत्रों का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्था तथा सेना की तैयारियों का जायजा लिया। सर्वोच्च न्यायालय के 5 नवनियुक्त न्यायाधीश आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत उन्हें शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए वीडियो जारी किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना राज्य गठन दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में तेलंगाना वासियों की प्रगति और समृद्धि की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली सांस्कृतिक साहस दृढ़ संकल्प तथा संघर्ष का प्रतीक है। उन्होंने तेलंगाना वासियों के बेहतर स्वास्थ्य और सफलता की कामना की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्ला से भी संपर्क किया है। श्री ट्रंप ने बताया कि अब बेरूत की ओर सेना नहीं भेजी जा रही है और जो सैनिक रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। हिजबुल्ला ने कहा है कि यदि इसराइल की ओर से हमले बंद होते हैं तो वो भी हमला नहीं करेगा। और खेलों में 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीइंग डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। चयनित समूह अब प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। इस समूह में पेरिस 2024 ओलंपियन बलराज पवार, एशियाई खेलों में 2022 के रजत पदक विजेता अरविंदर सिंह और 2022 के दोहरे पदक विजेता जसविंदर सिंह शामिल हैं। मौसम विभाग ने आज बेहतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
3: तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम,
1: जी
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार-बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: साथियों, आप सुन रहे कार्यक्रम आपकी फरमाइश और मैं हूं आपके साथ अल्पना। और ये देखिए, बहुत अच्छे अच्छे मेल्स आ चुके हैं मेरे पास, और इसमें से सबसे पहले जो हम संदेश ले रहे हैं वो है पलारी छत्तीसगढ़ से, नितेश कुमार का, दुर्गा प्रसाद पराग पूना और राम देवगन और कृष्णा हमें संदेश भेज रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास जो संदेश आया है वो है मस्कीन जी का, जी हाँ, और इन्होंने संदेश भेजा है, तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष, चैतन्य चंडीगढ़ से, और राहुल खुराना, रजत खुराना, केशु खुराना लिख रहे हैं और थैंक यू बोल रहे हैं कि सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। आपको भी गुड मॉर्निंग और धन्यवाद आप लोग का कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ग्राम मामना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण, विश्वकर्मा, साहिल, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और इसके अलावा जिला हरियाणा से, हम सिरसा जिला से हरियाणा से हमारे पास हैं राधेश्याम शर्मा, इंदिरा और सार्थक शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और नमस्कार हमें भेज रहे हैं खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्म मल्होत्रा, लाडो, कोयल मल्होत्रा, पापा जी, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और डुग्गू भविका सिक्का भी हमें संदेश भेज रही हैं। और इस जमशेदपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रीरामपुर महाराष्ट्र से, फतेमा कॉलोनी से ये संदेश हमें मिला है, नासिर शेख का, नाजिया नासिर का, साजिद शाहिद का, गोविंदपुरा से है, अहमदनगर से जुनैद और साहिबा, मिखाइल और जैनब। और आप सबके ऐसे प्यारे प्यारे संदेश देख के बहुत अच्छा लगता है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे पास संदीप मक्कड़ और ज्योति मक्कड़ मन्नत हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कमल सहानी, और ये हमें संदेश भेज रहे हैं जालंधर से। तो चलिए और भी संदेश लेंगे, इससे पहले सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत जो कि है मोनाली ठाकुर की आवाज़ में फिल्मों मुँह के धागे से, संगीत से सजाया अनु मलिक ने और बोल हैं वरुण ग्रोवर के।

और जो अगला संदेश हमें मिला है वो नमस्कार भेज रहे हैं वांगेड खेड़ा से पंजाब से। इनकी संदेश है मिंटू थॉमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा का आपको भी प्यार भरा नमस्कार। और इसके अलावा तहे दिल से शुक्रिया भेज रहे हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर, राही महराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर, हरिद्वार से आपको भी शुक्रिया। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति, शिवांश वर्मा और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया जमशेदपुर से। और हमारे साथ जुड़े हुए उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसु, अर्पण, अर्णव और सत्यम जो कि झारखंड पाकुड़ से, इनका संदेश हमें मिला है। और इसके अलावा हमारे पास संदेश आया है जो कि नमस्कार और आदाब भेज रहे हैं, आपको भी नमस्कार। और लिख रहे हैं हमें निराशा है कि आप नज़रअंदाज कर रही हैं। देखिए नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं और संदेश कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके सबके ले सकें। ये हमें संदेश भेजा है छोटी बलिया करजन मुंबई से, अहमद भाई फूल वाले, दुख नी सदफ जूही इकबाल, इमरान अहमद और कापसेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से, बिटिया आमना और आसमा परी राबिया, आशु अहमद और समस फूले परिवार का ये हमें संदेश मिला है। इसके अलावा किशनगंज बिहार से हमारे पास रविंदर मोहनदास और आशा देवी जी का संदेश आया है। और रामेश्वर कटेरिया, उमाकांति, कमलेश, इनकी पुत्रवधू निशा और प्रतिमा और वेद बाबूजी हमें संदेश भेज रहे हैं मुंगीसापुर कानपुर देहात से। और रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान और इरफान और जशीन खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं हनुमानगढ़ राजस्थान से। और एक और संदेश हम ले लेते हैं टैगोर गार्डन नई दिल्ली से, संदेश रविंद्र सिंह छावड़ा, इंद्रजीत कौर छावड़ा और स्वीटी छावड़ा का। और आप लिख रहे हैं कि अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो और आप उसे या तो दूर देख रहे हो तो आपके गुरूर से नहीं दे गुरूर अपने गुरूर से देख रहे हो तो इसको इस बात की आपने जो लाइन लिखी है ठीक है, लेकिन थोड़ा और अच्छे से आप लिख सकते हैं कि हाँ बिल्कुल गुरूर नहीं होना चाहिए। और बाकी अच्छा है आप लोग हम लोग को कुछ ना कुछ लिख के भेजते रहते हैं। और चलिए एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं जुविन नौटियाल की आवाज़ में, बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा गीत है फिल्म ड्रीम गर्ल 2 से।

और जो अगला संदेश है वो है हमारे पास संजय डांडिया डांगिया और नमन का अपार का, और ये बागपत उत्तर प्रदेश से हमें संदेश भेज रहे हैं। और इसके अलावा हम बुलंदशहर से हमारे पास संदेश है मोहम्मद सईद अब्बासी, निकट परवीन शहनवास, सरफराज फरदीन, सुहाना अरजान और अब्बासी परिवार का। और हमारे पास संदेश है एक और संदेश है, ये भी सेम संदेश है। तो साथियों बहुत सारे संदेश हैं और अभी हमारे कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है। अगला एक खास कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे 10:30 पर, तो सुनते रहिए इंद्रप्रस्थ चैनल।

0: सुनते हैं अगला कार्यक्रम।
1: ये आकाशवाणी है। भारत में व्यवस्थित रेडियो प्रसारण 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो नाम से शुरू हुआ था। इस प्रसारण को शुरू हुए 90 वर्ष हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में प्रस्तुत है वृत्त रूपक श्रृंखला प्रसारण की प्रतिध्वनिया का दूसरा भाग। लेखक और प्रस्तुतकर्ता हैं पार्थ सारथी थपलियाल और अशोक अग्रोही। संपादन और प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह। परिकल्पना और निर्देशन मनीषा जैन और प्रमोद कुमार।

सोया भारत अंगड़ाई ले रहा था, वीर जवानों में आजादी का जोश बढ़ रहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान से सिंगापुर होते हुए आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करते हुए कोहिमा तक आ चुके थे।

0: एक ओर गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ना चाहते थे, तो दूसरी ओर मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना धार्मिक आधार पर भारत के विभाजन पर अड़े हुए थे।
1: एक दिन वो भी आया जब ब्रिटिश सरकार को लगा कि अब भारत छोड़ना ही पड़ेगा।
0: अंग्रेज सरकार के विरुद्ध जन आंदोलन और तेज हो गया।
1: भारत को आजाद कराने की विधि व्यवस्था के लिए इंग्लैंड से कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया।
0: मोहम्मद अली जिन्ना ने कमीशन के सामने मुस्लिम लीग का अपना एजेंडा रख दिया। वे मुस्लिमों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग पर अड़े थे।
1: 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हो गया था।
0: 3 जून 1947 की सांझ ढल रही थी। सुगबुगाहट थी कि आज भारत की आजादी को लेकर नेता लोग आकाशवाणी आ रहे हैं। कुछ ही देर में वायसराय, लॉर्ड माउंटबेटन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार बलदेव सिंह दिल्ली के प्रसारण भवन आ गए।
1: स्टूडियो की बत्ती लाल हुई। माउंटबेटन ने अपने साथ बैठे सहभागियों के चेहरे पढ़े और अपनी बात कह दी।
2: A statement will be read to you tonight, giving the final decision of His Majesty's government as to the method by which power will be transferred from British to Indian hands. But before this happens, I want to give a personal message to the people of India, as well as a short account of the discussions which I have held with the leaders of the political parties, and which have led up to the advice I tendered to His Majesty's government during my recent visit to London. Since my arrival in India at the end of March, I have spent almost every day in consultation with as many of the leaders and representatives of as many communities and interests as possible. I wish to say how grateful I am for all the information and helpful advice they have given me. Nothing I have seen or heard in the past few weeks has shaken my firm opinion that with a reasonable measure of goodwill between the communities, a unified India would be by far the best solution of the problem. I have made no mention of the Indian states, since the new decisions of His Majesty's government are concerned with the transfer of power in British India.
1: उन्होंने जो कहा, उसका भाव था।
0: भारतीय लोग लंबे समय से आजादी पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राजनीतिक अस्थिरता, सांप्रदायिक तनाव और पाकिस्तान की मांग को देखते हुए भारत विभाजन रोकने के प्रयास सफल नहीं रहे। 72 दिन में यानी 15 अगस्त तक सत्ता हस्तांतरण किया जाना है। उससे पहले काफी काम करने हैं।
1: पंडित जवाहरलाल नेहरू के कथन का सार था,
3: यह एक कठिन निर्णय है जिसे हमने भारी मन से स्वीकार किया है, लेकिन यह फैसला हमें आजादी की ओर ले जाएगा।
1: मोहम्मद अली जिन्ना बोले,
4: हम जो चाहते थे वो हमें मिलने वाला है, बस थोड़े से सब्र की जरूरत है।
1: सरदार बलदेव सिंह के कथन का सार था,
4: मुल्क का बंटवारा होना कोई अच्छी बात नहीं है। देश के अंदर जिस तरह के हालात हैं, उन्हें देखते हुए देश का बंटवारा करना एक मजबूरी है। जरूरी है कि हम शांति बनाए रखें।
0: भारत के प्रसारण इतिहास में 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि का समय बहुत खास था। इसी समय ऑल इंडिया रेडियो ने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित सत्ता हस्तांतरण समारोह का सजीव प्रसारण किया था।

0: वतन।
1: सेंट्रल हॉल खचाखच भरा हुआ था, वातावरण बहुत खुशगवार था। रात के करीब 12 बजे थे, एक उद्घोषणा हुई और लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत की सत्ता प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंप दी। इस अवसर पर वॉइसरॉय लुई माउंटबेटन ने अपने संबोधन में कहा,
2: I have a message from His Majesty the King to deliver to you today. This is His Majesty's message. On this historic day, when India takes her place as a free and independent dominion in the British Commonwealth of Nations, I send you all my greetings and heartfelt wishes. Freedom-loving people everywhere will wish to share in your celebration. At this historic moment, let us not forget all that India owes to Mahatma Gandhi.
1: प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने लोक प्रसिद्ध संबोधन ट्रिस्ट विद डेस्टिनी में कहा,
3: कितने बरस हुए कि हमने किस्मत से एक बाजी लगाई थी, एक इकरार किया था, प्रतिज्ञा की थी, अब वक्त आया कि हम उसको पूरा करें। बिल्कुल पूरी तो शायद अब भी न हो, लेकिन फिर भी एक बड़ी मंजिल पूरी हुई, हम वहां पहुंचे। मुनासिब है कि ऐसे वक्त पहला काम हमारा ये हो कि हम एक पुरानी और एक नई प्रतिज्ञा फिर से हम करें, इकरार करें

0: एक तरफ भारत की आजादी का जश्न था तो दूसरी तरफ विभाजन का दुख।
1: भारत के बंटवारे ने हमारी साझी विरासत को बड़ी ठेस पहुंचाई। दोनों ओर अनगिनत लोग हिंसा के शिकार हुए।
2: हम

0: देश में बंटवारे के कारण जगह जगह शरणार्थी शिविर लगाए जा रहे थे। पाकिस्तान से विस्थापित कुछ लोग कुरुक्षेत्र में रुके हुए थे। गांधी जी को विस्थापितों से मिलने कुरुक्षेत्र जाना था, लेकिन व्यस्तता के कारण वे जा न सके। गांधी जी को सुझाव दिया गया कि वे रेडियो के माध्यम से अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
1: गांधी जी पहली और अंतिम बार 12 नवंबर 1947 को रेडियो स्टेशन आए। 3 बजे उन्होंने कुरुक्षेत्र में ठहरे विस्थापितों को संबोधित किया।
2: मेरे दुखी भाइयों और बहनों, मुझे कोई पता नहीं है कि सिवाय आपके मुझको कोई भी सुनता है या नहीं। ये अनुभव मेरी जिंदगी में मेरे लिए दूसरा है। पहला अनुभव इंग्लैंड में हुआ था, जब मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गया। मुझको पता ही नहीं था तो मुझको इस तरह से कुछ बोलना है। मैं तो एक अनजान पुरुष हूँ, मैं कोई दिलचस्पी भी नहीं लेता हूँ, लेकिन दुख के साथ मिल जाना वो तो मेरा जीवन भर का प्रयत्न है, जीवन भर का मेरा पेशा है। जब मैंने सुना कि आप लोगों में करीब 2.5 लाख रिफ्यूजी पड़े हैं, और मैंने सुना कि अभी भी लोग आते ही रहते हैं, तो मुझको बड़ा दुख हुआ, मुझे चोट लगी, और मुझको ऐसा ही हुआ कि मैं आपके पास पहुंच जाऊं। आने वाला तो कल था, लेकिन ये हो नहीं सकता था, क्योंकि यहाँ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग के बारे में वर्किंग कमेटी मिलने वाली थी। तो घनश्याम दास जी ने शायद सोचना की कि अगर मैं रेडियो से बोलूं आपके लिए और आपके सामने तो अच्छा होगा, और पीछे जब जा सकता हूं तब जाऊं। तो मैं तो आपके पास आने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कुछ भी हिंदुस्तान की सेवा की है या तो कहूँ कि जगत की, क्योंकि मेरे पास हिंदुस्तान और जगत कोई अनोखी चीज नहीं है। अगर हिंदुस्तान की सेवा करता हूँ तो उससे उसके मार्फत भी सारे

0: गांधी जी 9 सितंबर 1947 से 30 जनवरी 1948 तक बिरला हाउस में रहे।
1: बिरला हाउस में शाम के वक्त गांधी जी प्रार्थना सभा करते थे। ऑल इंडिया रेडियो प्रार्थना सभा की रिकॉर्डिंग करने स्टाफ को बिरला हाउस भेजता था।
0: इस कार्यक्रम का प्रसारण स्टूडियो से रात 9:30 बजे होता था।

0: सब कुछ सामान्य चल रहा था। 30 जनवरी 1948 को शाम 5:17 पर अचानक वो हो गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, गांधी जी की हत्या कर दी गई। पूरा देश दुख के अथाह सागर में डूब गया।
1: अगले दिन बिरला हाउस से बापू की अंतिम यात्रा निकाली गई।
0: इस यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। ऑल इंडिया रेडियो के प्रतिष्ठित कमेंटेटर मेलविल डेमेलो ने किसी तरह एक वाहन में खड़े होने की जगह बनाई और वहीं से एक मोबाइल ट्रांसमीटर से उन्होंने अंतिम यात्रा का आंखों देखा हाल सुनाया।
2: Now as the flames begin to lick, a roar goes up from the crowds. Now the fire is caught and more pieces of sandalwood are being placed. Garlands being flung into the air. Policeman's sticks being raised to try and keep the crowds down. We're trying to move in closer to get a last glimpse.

0: 30 जनवरी 1948 को शुक्रवार था। गांधी जी की स्मृति को बनाए रखने के लिए आकाशवाणी से आज भी प्रत्येक शुक्रवार को गांधी जी के जीवन पर आधारित गांधी चर्चा या ऐसे ही अन्य कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है।
1: इसके साथ साथ बापू के प्रति जन भावनाओं का सम्मान करते हुए वर्ष 2001 में तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज ने घोषणा की कि प्रतिवर्ष 12 नवंबर को आकाशवाणी में लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाएगा। यही वो दिन है जब 1947 में महात्मा गांधी पहली और अंतिम बार आकाशवाणी आए थे।

0: बहुत संघर्षों के बाद देश स्वाधीन हुआ। विभाजन के दंश ने समाज में दरारें पैदा कर दी। दोनों ओर आपसी दंगे हुए। रेडियो से नेताओं की शांति की अपील बार बार प्रसारित की जा रही थी। इसका प्रभाव साहित्य और संस्कृति पर भी पड़ा। आकाशवाणी में अपर महानिदेशक रहे साहित्यकार राजीव कुमार शुक्ल बताते हैं,
1: 200 साल की ब्रिटिश औपनिवेशिक गुलामी से जब अगस्त 1947 में भारत स्वाधीन हुआ तो वो पूरे देश के लिए बहुत आनंद और उमंग का प्रसंग बना और पूरे देश में उसका उत्साह के साथ उत्सव मनाया गया। पर साथ साथ एक बहुत बड़ी विभीषिका भी उस नवस्वाधीन देश ने झेली जब भारत का विभाजन हुआ, दो देश बने, तो हुआ ये कि इस पूरी प्रक्रिया में बहुत बड़ी तादाद में लाखों लोग सीमाओं के आर पार आए गए और साथ साथ भयानक हिंसा भी हमने देखी, सांप्रदायिक हिंसा भी देश ने झेली। निश्चित रूप से यह बहुत बड़ी संकट की बात थी क्योंकि भारत का स्वाधीनता आंदोलन भी जो है वो नैतिक मूल्यों को ऊपर रख करके और उनका पालन करते हुए चलाया गया था। हमारे जो स्वाधीनता आंदोलन के सबसे बड़े नायक थे, सबसे बड़े नेता थे, जिन्हें हम उचित ही राष्ट्रपिता कहते हैं, महात्मा गांधी, उनकी पूरी सीख ये थी कि हम अहिंसा की शक्ति से संसार की सबसे बड़े साम्राज्य का मुकाबला करेंगे। लेकिन आजादी के बाद भारत में हमने उस बड़े संकट को देखा। स्वाधीन भारत की जो सरकार थी, चूंकि इस देश ने शुरू से ही धर्मनिरपेक्षता को एक मूल्य के रूप में, आदर्श के रूप में स्वीकार किया था, तो वह हिंसा किसी तरह से भी स्वीकार्य नहीं थी। इसलिए पूरी तरह से प्रयास ये हुआ जो हमारे नेता थे आजादी की लड़ाई के और उसके बाद भारत की आजाद सरकार के, प्रधानमंत्री पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री सरदार पटेल और अन्य तमाम जो लोग थे, मौलाना आजाद और तमाम जो महत्वपूर्ण हमारे नेता थे, महात्मा गांधी के नेतृत्व में वो सब लगातार शांति स्थापना के लिए निरंतर प्रयास कर रहे थे, अपीलें कर रहे थे। और तय बात है कि उस समय आजादी मिल चुकी थी और इसलिए ऑल इंडिया रेडियो की भूमिका भी अब भारत के हित में काम करने की हो चुकी थी, भारत की जनता के हित में काम करने की हो चुकी थी। तो शांति की जितनी भी ये बातें थीं, शांति के जितने भी प्रयास थे, उनको आगे बढ़ाना और साथ साथ ऐसे माहौल में एक दूसरा पक्ष ये होता है कि सूचनाओं का आदान प्रदान, सूचनाओं का प्रसार, सही सूचनाओं का प्रसार, अगर सूचनाएं सही सही मिलती हैं तो अफवाहों का बाजार उतना गर्म नहीं होता, झूठ का उतना प्रसार नहीं होता। तो ऑल इंडिया रेडियो ने बहुत जोर शोर के साथ ये किया। उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण ये भी भाग था कि महात्मा गांधी की जो प्रार्थना सभाएं होती थी उनका भी फिर प्रसारण होता था और साथ साथ इस तरह से लगातार ये प्रयास होता था। हम जानते हैं कि ये जो विभीषिका थी, उस विभीषिका ने दोनों ही तरफ का गहरा असर इतना पड़ा कि हमारे साहित्य में, संस्कृति में भी इसका प्रभाव आया, चित्रकला में आया, साहित्य में। हम जानते हैं कि हिंदी की अगर बात करें, ये यशपाल का झूठा सच सबसे बड़ा, उसको एक महागाथा के रूप में लिया जाता है विभाजन की त्रासदी की। भीष्म साहनी जी का तमस और ऐसी अनेक रचनाएं हैं, असगर वजाहत का एक बहुत मशहूर नाटक है जिन लाहौर नहीं देखा, इस तरह से अनेक रचनाएं की गई, कृष्णा सोपती की रचनाएं हैं, अमृता प्रीतम की रचनाएं हैं जो पंजाबी में लिखी गई, और उधर गर्म हवा जैसी एक महान फिल्म भी बनी, बहुत बाद में बनी, लेकिन उसमें उस पूरे परिवेश को जैसे जीवंत किया गया और अंत में ये संदेश दिया गया कि मनुष्यता का धर्म सबसे बड़ा है। ऑल इंडिया रेडियो ने पूरा प्रयास किया लगातार सद्भाव, प्रेम, सौहार्द बनाए रखने के लिए अपनी पूरी शक्ति से काम किया।
0: आज का अंक यही संपन्न होता है। आगामी अंक में मजबूत होते लोकतंत्र, रेडियो के विस्तार, विविध भारती की स्थापना, इन 90 वर्षों की यात्रा के प्रमुख पड़ाव होंगे। अब अनुमति दीजिए।

अभी आप सुन रहे थे वृत्त रूपक प्रसारण की प्रतिध्वनिया श्रृंखला की दूसरी कड़ी। वाचन स्वर देवेंद्र त्रिपाठी और निशा भारद्वाज। आलेख और प्रस्तुति पार्थ सारथी थपलियाल और अशोक अग्रोही। संपादन और प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह। परिकल्पना और निर्देशन मनीषा जैन और प्रमोद कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किया गया।

आपका जलदाता ग्रैंड वाटर, कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहाँ धरती में इतनी नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देती। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूं मैं? क्या लिखूं अपना दर्द, अब तो कलम में बस बूंदे ही बची हैं। अपनी फोटो भेज रहा हूं, खुद ही देख लीजिए मेरी सेहत। क्या पता अगली चिट्ठी लिख भी पाऊंगा या नहीं। आप कर सकते हैं मेरी सहायता, बस दो शब्द याद रखिए, कंट्रोल और सेव। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा।

आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है लाइव रेडियो लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस न्यूज पॉडकास्ट्स साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन अब आपकी एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 11 बजने को है, अब समाचार होंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमा की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमा में पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मुद्दा उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमा के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिया है। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण और समय सीमा से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। दस्ते ने बताया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। सीबीएसई ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। छात्रों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका ₹100 और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न ₹25 का भुगतान करना होगा। आज तेलंगाना का स्थापना दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेलंगाना को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परिश्रमी लोगों का साथ मिला है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से संपन्न है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली संस्कृति साहस, दृढ़ संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज इटली के राष्ट्रीय दिवस पर वहां के लोगों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी और भी मजबूत होती रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्ला से भी संपर्क किया है। श्री ट्रंप ने बताया कि अब बेरूत की ओर सेना नहीं भेजी जा रही है और जो सैनिक रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। हिजबुल्ला ने कहा है कि यदि इसराइल की ओर से हमले बंद होते हैं तो वो भी हमला नहीं करेगा। घरेलू शेयर बाजार के संविदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 322 अंक गिरकर 73,945 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक लुढ़ककर 23,229 पर कारोबार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Sunil Verma. Myanmar President U Min Aung Hlaing has assured Prime Minister Narendra Modi that Myanmar's territory will not be allowed to be used against India's security interests. The two leaders held wide-ranging talks to boost bilateral ties in trade, defense, energy and connectivity in New Delhi yesterday. Mr. Aung Hlaing is on a 5-day visit to India. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said the President of Myanmar reiterated the assurance that Myanmar's territory will not be permitted to be used against India's security interests. Mr. Misri said Prime Minister Modi reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests.
4: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
3: President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi extended greetings to the people of Telangana on the occasion of Statehood Day. In a social media post, the President said that Telangana is blessed with a rich cultural heritage and hard-working people. She said that the state has made significant strides in innovation and development over the years. In a social media post, the Prime Minister said that the people of Telangana are renowned for their creativity and business acumen. BJP National President Nitin Naveen held a meeting with senior party office bearers and workers in New Delhi yesterday. Talking to media, party MP and spokesperson Dr. Sambit Patra shared key details, highlighting discussions on Narendra Modi government's 12 years of service, organizational expansion and future initiatives aimed at broadening the party's outreach across various sections of society. He said that the government is completing 12 years in office and everyone has witnessed how India has progressed under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, with advancement taking place across every sector. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has announced that the portal for verification of issues in the supplied scanned copies of answer books and for re-evaluation of answers has been made live from today. The portal will remain open till the 6th of June. In a statement, the CBSE said the facility can only be availed by the students who have obtained scanned copy of their evaluated answer books. The board stated that Aadhaar verification has been included for security reasons. For children who do not have Aadhaar, the parents, relatives or guardians' Aadhaar details can be used. According to CBSE, students have to pay 100 rupees per answer book for verification of issues observed in supplied scanned copies, whereas it is 25 rupees per question for re-evaluation. The fee can be paid only through online modes such as UPI, credit card, debit card or net banking. CBSE has advised students to watch the tutorial video carefully for step-by-step instructions on how to apply for verification of marks and re-evaluation. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today extended greetings to Italy on the occasion of its National Day. In a social media post, Dr. Jaishankar expressed confidence that the special strategic partnership between the two countries will continue to go from strength to strength. US President Donald Trump has said that Israel and Hezbollah have agreed to dial back fighting after he held talks with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and communicated with the Lebanon militant group through mediators. Trump announced the development in a social media post following his call with Netanyahu. The US president said there will be no troops going to Beirut and any troops that are on their way have already been turned back. He said that Hezbollah had agreed that all shooting will stop, that Israel will not attack them and they will not attack Israel. The Indian stock market opened lower amid geopolitical tensions and concerns over a weak monsoon forecast today. Sensex began the session at 73,945, down 322 points or 0.43% from the previous close, while Nifty opened 23,229, lower by 153 points or 0.65%. And that is the end of this news bulletin.
0: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम सब्र। शुरुआत करते हैं लालित्य मुनश्वर की आवाज़ में इस गीत के साथ। बोल है तुम्हारी एक नज़र।

कहते हैं घूमना फिरना सेहत के लिए ही नहीं, दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा होता है और मूड के लिए भी। तो अगर आप भी घूमना फिरना पसंद करते हैं तो बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है और करना भी चाहिए। और अगर आपको समय नहीं मिलता और आप ऐसा कुछ प्लान नहीं कर पाते हैं तो हमारे साथ आप तस्वीर के सफर में तो जुड़ ही सकते हैं। आपको घर बैठे हम अलग अलग जगहों की सैर कराते हैं और कभी अगर आपका प्लान बने तो आप इन जगहों पर जा भी सकते हैं घूमने के लिए। पर पहले जान लेना बहुत जरूरी है ना कि कहां पर आखिर देखने के लिए क्या है। भारत बहुत बड़ा है दोस्तों और यहां पर देखने के लिए न जाने कितनी ही खूबसूरत चीजें हैं कि अगर आप इन्हें देखना शुरू करें तो शायद एक जन्म भी कम पड़ जाए, है ना। तो फिर आज मैं आपको जिस जगह पर लेकर चल रही हूं वो भी जरूर बताऊंगी। पहले बता दूं कि आप सुन रहे हैं तस्वीर आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। 11:12 और 3 सेकंड हो चुके हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस। तो तस्वीर के सफर में आज मैं आपको ले चलूंगी राजगीर, बौद्ध परिषदों का मेजबान, बिहार का ऐतिहासिक स्थल। जी हां, राजगीर या राजगृह जैसे कि ये जगह अपने अच्छे दिनों में जानी जाती थी, मगध महाजनपद की सबसे पहली राजधानी हुआ करती थी जो बाद में गंगा नदी के किनारे बसे पाटलिपुत्र शहर में स्थानांतरित की। आज ये एक छोटा सा नगर है जो पटना से दक्षिण पूर्व दिशा में 60 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। 7 पहाड़ियों से घिरी ये जगह इन्हीं पहाड़ियों से घिरी घाटी में बसी है। इसका शाब्दिक अर्थ है राज परिवारों का निवास स्थान, यानी राजगीर या राजगृह। अगर मैं बात करूं इस जगह के इतिहास की तो ऐतिहासिक दृष्टि से राजगीर जैनों, बौद्धों, हिंदुओं और इतिहास के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि बुद्ध अनेक बार राजगीर की यात्रा कर चुके हैं। यहां पर आने का उनका प्रमुख उद्देश्य था बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करना। यही वो जगह है जहां पर उन्होंने अपने महत्वपूर्ण उपदेशों का व्याख्यान किया था। इन्हीं उपदेशों में से एक उपदेश ऐसा था जिसने यहां के पूर्व महाराज बिंबिसार को और बाकी बहुत से लोगों के साथ बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित किया। माना जाता है कि भगवान महावीर ने भी राजगीर में 14 वर्षा ऋतु या चौमास बिताए थे और यहीं पर उन्होंने अपना पहला उपदेश भी दिया था। राजगीर में जैनों का एक श्वेतांबर और एक दिगंबर मंदिर भी है। इस शहर की जड़ें महाभारत तक फैली हैं, जिसकी वजह से या जिसके अनुसार कहा जाए ये जरासंध की नगरी हुआ करती थी। कहते हैं इस शहर में आज भी जरासंध का अखाड़ा मौजूद है जहां पर पहलवान

अपना अभ्यास करते हैं। राजगीर वो जगह है जहां सम्राट अशोक ने अपने प्रसिद्ध स्तंभ का निर्माण किया था, जिस पर हाथी का चिन्ह बना हुआ है। और यहां पर इस स्तंभ की मौजूदगी इसी बात की ओर संकेत करती है कि ये जगह सम्राट अशोक के शासनकाल में भी, यानी 2400 से भी अधिक साल पहले भी, बहुत खास थी। कुछ लेखों के अनुसार यहाँ से शासन करने वाले मगध के अंतिम शासक बिंबिसार को उन्हीं के पुत्र अजातशत्रु द्वारा यहाँ की जेल में बंदी बनाकर रखा गया था, जिसके बाद मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया और वो जेल आप आज भी वहाँ के दुर्ग की दीवारों के सहारे खड़ी देख सकते हैं। बहुत खास है राजगीर इतिहास के तौर पर भी और यहाँ पर धार्मिक तौर पर भी अगर आप देखें तो सचमुच आज भी यहाँ लोगों का तांता लगा रहता है। अभी यहां जाने की बात मैंने क्यों की है, इसके पीछे भी एक खास वजह है और वो वजह है मलमास मेला। मलमास मेला चल रहा है राजगीर में, यानी ये जगह बहुत खास तौर पर जानी जाती है मलमास मेले के लिए। क्या है ये मेला और क्यों खास है जरूर बताऊंगी सब कुछ इस बारे में, लेकिन फिलहाल शुरू करते हैं इस सफर को इस प्यारे से गीत के साथ। तो ये रहा धनवान फिल्म से लता जी और सुरेश वाडेकर साहब की आवाज में खूबसूरत गीत आपके लिए।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड पर।

नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हरविंदर मांकड़, एक राइटर, एक कार्टूनिस्ट और फिल्म डायरेक्टर। आप मुझे मेरे करेक्टर मोटू पतलू से अच्छी तरह जानते होंगे। पिछले 50 साल से मैं उसे लिख रहा हूं और ड्रा भी कर रहा हूं, और टीवी पे भी आ रहे हैं। संपत चंपत, शेख चिल्ली और ना जाने ऐसे 500 करेक्टर्स आप सबके मोहब्बत और प्यार से इस दुनिया में मशहूर हैं। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आकाशवाणी के बारे में। जी हाँ, मेरा बचपन जिसके साथ बीता, आज 90 साल हो गए हैं आकाशवाणी अपना 90 वर्षगांठ मनाने जा रही है। मुझे याद है जब हम छोटे हुआ करते थे तो मेरे घर में एक रेडियो हुआ करता था, उसके अंदर एक प्लास्टिक की तार जैसी एक लाइन होती थी और एक गोल स्विच होता था जिसको हम मैनुअल घुमाते थे और वो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को पकड़ता था। लेकिन मुझे आकाशवाणी की जो सबसे सुंदर लगती थी, सुबह सुबह की जो सिग्नेचर ट्यून आती थी सबसे पहले स्टार्ट होने से पहले, यकीन माने कि मैंने एक एक प्रोग्राम को नोट किया हुआ था, जैसे कि 9 बजे ये आएगा, 6 बजे ये आएगा। मुझे आज तक याद है कि 9 बजे हवा महल आया करता था, 7 बजे फौजी भाइयों का फरमाइशी प्रोग्राम आता था, चित्रमाला आता था, और इसके अलावा बहुत सारे और बच्चों के कार्यक्रम, बड़ों के कार्यक्रम, विविध भारती का अपना एक अलग मजा था, क्योंकि टीवी होता नहीं था, रेडियो एकमात्र साधन था। तो एक ट्रांजिस्टर मेरे पापा ने मेरे को लेके दिया था जो मैं रात को हवा महल जिसपे सुना करता था। समय बीता, मुझे याद है ये 1977 की बात है, मैं 12 या 13 साल का था। तो उस समय धर्मवीर फिल्म रिलीज हुई थी मनमोहन देसाई की, और जहां तक मुझे लगता है पहला स्पॉन्सर्ड सॉन्ग, प्रायोजित गाना रोज सुबह 9:30 के आसपास बजता था मोहम्मद रफी की आवाज में, ओ मेरी महबूबा, ओ मेरी महबूबा। तो मैं कहीं भी खेल रहा होता था, क्रिकेट खेलते थे, लेकिन जैसे ही मुझे मालूम होता था कि अब 9:30 हो गए, मैं भागता हुआ घर आता था और मोहम्मद रफी साहब का वो

0: जी मेरा क्या, ये सुना करता था, इतना पसंद था मुझे। और बहुत सारे किस्से आकाशवाणी के साथ मेरे, हर दम रेडियो का दीवाना हुआ करता था मैं। बेशक आज टीवी आ गया है, बेशक आज बहुत कुछ आ गया, मगर आज भी मेरी जो पसंद है वो विविध भारती होता है या आकाशवाणी का गोल्ड होता है, क्योंकि पुराने गाने बजाते हैं, संस्कारी गाने बजाते हैं और बेहतरीन ढंग से इसमें परिभाषा से बोला जाता है, कोई उलझुल नहीं बोलते, पब्लिक को एक अच्छा संदेश देते हैं। तो मैं हमेशा कहूंगा आकाशवाणी, अभी तो 100 साल आएंगे, आप 100वीं वर्षगांठ मनाएं, फिर 1000वीं मनवाएं, खूब रहे आकाशवाणी, जैसा कोई हो नहीं सकता। आई लव यू आकाशवाणी, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं।
1: किसी एक की बात नहीं है, आई लव यू आकाशवाणी सभी की बात है और हम सभी आकाशवाणी से बहुत प्यार करते हैं। देखिए ना, तभी तो 24 घंटे हम और आप साथ साथ रहते हैं। 11:23:58 हो चुके हैं और तस्वीर की इस यात्रा में आज हम निकले हैं राजगीर की यात्रा पर। जी हाँ, राजगीर वो खूबसूरत जगह जहाँ पर अभी चल रहा है मलमास मेला। आप ये मलमास मेला क्या है ये भी बताऊंगी और यहाँ पर और क्या घूम सकते हैं आप वो भी बताऊंगी। जुड़े रहिए मेरे साथ। राजगीर में आयोजित होने वाला ऐतिहासिक मलमास मेला 2026 का भव्य आयोजन चल रहा है और ये मेला 17 मई से 15 जून तक निर्धारित है, यानी 17 मई से ही शुरू हो चुका है और इसे बिहार का मिनी कुंभ भी कहा जाता है। इस दौरान देश विदेश से लाखों श्रद्धालु राजगीर के पवित्र कुंडों में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं। और अगर मैं बात करूं इस जगह की, तो वही 17 मई को, जैसा कि मैंने कहा, ये मेला शुरू हो चुका है। माना जाता है कि हर 3 साल में पड़ने वाले अधिक मास यानी मलमास के दौरान, ये मान्यता है कि सनातन धर्म के 33 कोटि देवी देवता राजगीर में निवास करते हैं। यहाँ स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखते हुए यहाँ पर कई इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से, जैसे कि जर्मन हैंगर पंडाल, स्वास्थ्य शिविर, सुव्यवस्थित पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो अगर आप यहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल आसानी से यहाँ जा सकते हैं और इस जगह को घूम सकते हैं। बहुत सारी सुविधाओं का ख्याल रखते हुए इस मेले का आयोजन किया गया है। मेले के दौरान ब्रह्मकुंड, जो यहाँ का राजगीर का ब्रह्मकुंड है, इसमें 4 प्रमुख शाही स्नान होते हैं जिनमें से मुख्य स्नान हाल ही में संपन्न हुए हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं इन स्नानों की, तो भाई ये जो 31 मई का दिन है, यानी कल का जो दिन था, इस दिन दूसरा शाही स्नान हुआ था और जैसा कि मैंने कहा कि ये मेला शुरू हो चुका है 17 मई से, तो पहला स्नान उस दिन हुआ। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं 5 जून की, तो पंचमी स्नान इस दिन यहां पर होगा। 11 जून को तीसरा शाही स्नान होगा जो कि पुरुषोत्तमी एकादशी के दिन पड़ेगा और 15 जून को, जो कि आने वाला 15 जून है, अमावस्या स्नान और देवताओं का विसर्जन यानी मेले का समापन इस दिन होगा। तो अगर आप यहां पर जाने का सोच रहे हैं तो ये तिथियां भी आप प्लान कर सकते हैं, जब आप यहाँ पर जाकर इस जगह को देख सकते हैं, यहाँ स्नान का आनंद ले सकते हैं और यहाँ इस खूबसूरत मेले का हिस्सा बन सकते हैं, इस आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं बिहार के नालंदा जिले के विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर की, तो यहाँ पर ये एक महीने तक चलने वाला लगभग ये मलमास मेला जो है वो शुरू हुआ था, जैसा कि मैंने कहा 17 मई को। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने इसका उद्घाटन किया था, समागम का आधिकारिक उद्घाटन हुआ इस सुप्रसिद्ध धार्मिक समागम का। इसके अलावा उद्घाटन समारोह से पहले ब्रह्मकुंड परिसर स्थित यज्ञशाला में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र ध्वजारोहण और विशेष पूजा कार्यक्रम भी आयोजित किए गए यहाँ पर, जिसमें मुख्यमंत्री खुद शामिल हुए। और इस उद्घाटन के साथ ही इस पवित्र नगरी राजगीर में देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है, जो अगले ही एक महीने तक आस्था की डुबकी यहाँ पर लगाएंगे। कहा जाता है, अगर मैं बात करूं मलमास की, तो वायु पुराण के विवरण के अनुसार मलमास के दौरान राजगीर के पवित्र सरस्वती नदी और ब्रह्मकुंड में एक दिन का स्नान गंगा नदी में वर्ष भर स्नान करने के समान पुण्यदायी माना जाता है और इसी वजह से इस पावन महीने में देश के कोने कोने से साधु संत महात्मा और आम श्रद्धालु मोक्ष और आत्मशुद्धि की कामना के लिए राजगीर पहुंचते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये बिहार का मिनी कुंभ कहा जाता है, जिसे मलमास मेला भी हम कहते हैं। बुधवार 27 मई से शुरू हुआ यहाँ पर पहला स्नान जो था। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर शाही स्नान की शुरुआत भी हुई, जो काफी सारे साधु संतों महंतों और अलग अलग अखाड़ों ने, विदेश देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने यहाँ पर स्नान करके इसकी शुरुआत की। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये जो जगह है, ये राजगीर मलमास मेला, शुरुआती शाही स्नान जो यहाँ पर शुरू हुआ, इसके बाद अलग अलग अखाड़ों ने जैसे कि धार्मिक रीति रिवाजों के साथ ध्वज पताकाओं और जय घोष के साथ स्नान यात्रा में वो शामिल हुए। और यहाँ पर खाक चौक, बड़ी संगत, धनिया पहाड़ी संगत, रजौली संगत, कैलाश आश्रम, कबीरपंथी, फलाहारी बाबा संप्रदाय, ऐसे बहुत से संप्रदाय हैं जिन्होंने, जिनके अखाड़ों ने, संतों ने यहाँ पर भाग लिया। बहुत से जत्थों के आगमन से पूरा मेला जो क्षेत्र है वो इसके रंग में रंग गया, यहाँ के धार्मिक रंग में रंग गया। और सचमुच ही बहुत ही देखने लायक अनुभव रहा। लेकिन अभी भी

अगर आप यहाँ नहीं पहुँचे हैं और अगर यहाँ अब भी यहाँ पर जाएंगे तो ये मेले का आयोजन अभी भी जारी है, आप यहाँ पर अब भी इस खूबसूरत आयोजन का आनंद ले सकते हैं। बहुत कुछ बताऊंगी इस बारे में, लेकिन उससे पहले गीत आप तक पहुंचाती हूँ। ये रहा लता जी की आवाज में ये खूबसूरत गीत, और फिर आगे इस जगह के बारे में और भी बहुत कुछ है जानने के लिए।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10 plus 2 BTech Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready, cohesive, Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
4: राजगीर की यात्रा पर निकले हैं आप और हम, साथ साथ 11:34 हो चुके हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आंशरिका क्रिस्टल वॉइस और मैं आपको घुमा रही हूं राजगीर और राजगीर का मलमास मेला। जी हां, मलमास मेला जो यहां पर लगा हुआ है। परंपरा के अनुसार साधु संतों का पहला स्नान गुरु नानक कुंड में हुआ और इसके बाद संतों का जत्था सरस्वती नदी सप्तधारा होते हुए मुख्य ब्रह्मकुंड पहुंचा, जहां पवित्र स्नान और विशेष पूजा अर्चना के साथ अनुष्ठान संपन्न किया गया। स्नान के दौरान श्रद्धालुओं ने भी पवित्र कुंडों में आस्था की डुबकी लगाकर परिवार की सुख समृद्धि, आरोग्य और मंगल कामना की। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहां पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से चाक चौबंद चौकस इंतजाम किए गए हैं, श्रद्धालुओं को यहां पर किसी तरह की परेशानी ना हो इस बात का ख्याल रखते हुए इस मेले की पूरी तैयारियां की गई हैं। तो अगर आप यहां जा रहे हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली।

तैनाती की गई है। इसके अलावा श्रद्धालुओं की सहायता और मार्गदर्शन के लिए आपदा मित्र और विकास मित्र कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण देकर सेवा में लगाया गया है। ये कर्मी श्रद्धालुओं को सही रास्ता बताने, भीड़ नियंत्रण में सहयोग करने और जरूरत पड़ने पर सहायता उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। 15 जून तक चलने वाले इस मेले में राजगीर के 22 पवित्र गर्म जल कुंडों और 52 धाराओं में स्नान का विशेष महत्व है। इस दौरान 3 शाही स्नान समेत कई धार्मिक अनुष्ठान और आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। यहाँ पर मेले में बिहार सहित देश के अलग अलग राज्यों के अलावा नेपाल और श्रीलंका से भी साधु संत और श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं। पर्यटन विभाग और नालंदा जिला प्रशासन द्वारा पानी की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, स्वास्थ्य शिविर, प्रकाश व्यवस्था, नियंत्रण कक्ष, साफ सफाई और आपातकालीन सेवाओं की व्यापक व्यवस्था की गई है। पहले शाही स्नान के साथ आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या और भी बढ़ने वाली है और राजगीर एक बार फिर धार्मिक आस्था, आध्यात्मिक ऊर्जा और सांस्कृतिक विरासत का केंद्र बन रहा है। तो आपको यहाँ पर एक बार तो जरूर जाना चाहिए आस्था की इस डुबकी में अपने आप को सराबोर करने के लिए। आस्था के इस महापर्व में आने वाले श्रद्धालुओं और बच्चों के मनोरंजन के लिए यहाँ मैदान में व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। इस बार मेले में बड़े बड़े आधुनिक झूले, सर्कस, जादूगर के शो और भव्य थिएटर्स लगाए गए हैं जो शाम के समय आकर्षण का मुख्य केंद्र होंगे। और इसके अलावा सुरक्षा के मोर्चे पर जिला प्रशासन ने मेला क्षेत्र में आसमान में ड्रोन, हॉट एयर बलून और पैराग्लाइडर्स जैसी उड़ने वाली वस्तुओं पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। इसके अलावा भीड़ नियंत्रण के लिए जर्मन हैंगर पंडाल, रेस्क्यू लेन, मुफ्त मेडिकल कैंप, सीसीटीवी निगरानी और श्रद्धालुओं के लिए बेहद सस्ती दरों पर भोजन की व्यवस्था भी यहां पर की गई है। सस्ती रोटी काउंटर्स ऐसे लगाए गए हैं जहां पर आपको बहुत ही वाजिब दामों पर आसानी से भोजन की व्यवस्था मिल जाएगी। इसके अलावा गर्मी को देखते हुए भी जिला प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए करीब 2000 से ज्यादा कूलर भी यहां लगाए गए हैं ताकि मेले में आने वालों को गर्मी से भी राहत मिल सके। और भी बहुत कुछ है राजगीर में घूमने के लिए इस मेले के अलावा भी, तो वो भी सब कुछ मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ इस सफर में रहना होगा। फिलहाल गीत आशा जी की आवाज में आपके लिए, उसके बाद आगे क्या है इस यात्रा में जरूर बताऊंगी।

दोस्तों, राजगीर की सैर पर निकले हैं हम, और यहाँ पर न सिर्फ ये मेला बल्कि बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं इन जगहों की, तो जैसे कि विश्व शांति स्तूप है यहाँ पर। आज विश्व शांति स्तूप राजगीर का सबसे प्रसिद्ध स्थल बन गया है, जो एक पहाड़ी के ऊपर बसा है। और यहाँ पर पहुंचने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है रोप वे, यानी रस्सी वाला रास्ता। और इसी रस्सी के द्वारा आप उस स्तूप तक पहुंच सकते हैं। ये रोप वे बहुत ही साधारण है, जिसमें बैठने के लिए कुर्सी है, जिसमें एक समय पर एक ही व्यक्ति बैठ सकता है। इसे एक लोहे की रॉड के से ऊपर की ओर मजबूत रस्सी से जोड़ा गया है, और ये किसी एडवेंचर राइड से कम नहीं लगता। रोपवे की सवारी लगभग 12 मिनट की है, और इसी बीच अगर अचानक से कुछ ऐसा आपको दिखाई दे जो बहुत ही खूबसूरत हो, प्राकृतिक नजारा हो, तो आप हैरान मत होइएगा, क्योंकि ये सचमुच इसीलिए बना गया है ताकि आप यहाँ पर घाटी के ऊपर से आसमान के बीच लटकते हुए यहाँ के खूबसूरत नजारों को देख सकें। और अगर आप इन नज़ारों की बात करें, तो यहाँ पर सचमुच ये सवारी बहुत ही यादगार और एडवेंचरस होने वाली है आपके लिए। विश्व शांति स्तूप एक विशाल स्तूप है जो धुंधले से सफेद रंग का है, और जिस पर बुद्ध की स्वर्णिम प्रतिमाएं हैं जो उनके अलग अलग मुद्राओं को दर्शाती है। और ये स्तूप जापानी लोगों द्वारा बनाया गया था। आज भी यहाँ पर एक जापानी साधु रहते हैं जिन्हें फूजी बाबा के नाम से जाना जाता है, और जो इस स्तूप और यहाँ के मंदिर की देखरेख करते हैं। इस जगह की बहुत ही अच्छे से देखरेख की जाती है। यहाँ पर आप आकर आपको एक अलग ही तरह की खुशी और शांति महसूस होगी, जिसकी जरूरत आज हम सभी को है। हम एक शांत माहौल चाहते हैं, शांति की तलाश करते हैं, तो आपको एक बार जरूर यहाँ पर जाना चाहिए। यहाँ पर बहती हुई धीमी धीमी हवा के साथ फहराते यहाँ पर लगे रंग बिरंगे ध्वज इस जगह को और भी रंगीन और जीवंत बना देते हैं। यहाँ का वातावरण कभी भी सुस्त नहीं होता, और आपको यहाँ कभी उबाऊपन महसूस नहीं होता। तो एक बार आपको अपने जीवन में इस जगह की यात्रा पर जरूर जाना चाहिए। अगर मैं बात करूं सोन भंडार की गुफाओं की, तो राजगीर की सोन भंडार की गुफाएं आपको इस जगह से जुड़ी कहानियां बताती है। कहा जाता है कि इन गुफाओं के पीछे स्थित पहाड़ी स्वर्ण से जड़ी हुई है, और इन्हीं में से किसी एक गुफा के भीतर वहां तक पहुंचने का दरवाजा है। इस दरवाजे के पास की दीवार पर शंख लिपि में एक मंत्र लिखा है, जिसका अर्थ है अब तक नहीं पता है। कहते हैं कि जब उस मंत्र का अर्थ पता चलेगा और उसका उच्चारण होगा, तभी ये दरवाजा खुल पाएगा, जिससे कि उसमें छिपे स्वर्ण का पता लगाया जा सकता है। ऐसी कई किंवदंतियां इस जगह से जुड़ी हैं। ये भी कहा जाता है कि अंग्रेजों ने, जिन्होंने इन सारी गुफाओं की खोज की थी, इस दरवाजे को खोलने की सारी कोशिशें की थी, लेकिन सब कुछ व्यर्थ।

था। इन गुफाओं की दीवारों पर कुछ और भी नक्काशी का काम दिखाई देता है जो भारत में पत्थर पर नक्काशी के शुरुआती दौर को प्रदर्शित करता है, और इनमें से एक गुफा की बाहरी दीवारों पर जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं भी आप देख सकते हैं। शिलालेखों के अनुसार जैन साधुओं का मानना है कि इन गुफाओं की खोज तीसरी से चौथी शताब्दी के दौरान हुई थी और ये गुफाएं दो मंजिला हुआ करती थी, लेकिन अब ऊपर की मंजिलों तक पहुंचना नामुमकिन है। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में अगर मैं कहूं तो यहां पर व्यापक भूकंप आया और जिसकी वजह से इन संरचनाओं के बहुत से हिस्सों को काफी नुकसान पहुंचा था। आप अगर राजगीर की यात्रा पर जा रहे हैं तो यहाँ पर एक और जगह है जिसे मनियार मठ के नाम से जानते हैं, इसे भी आप देख सकते हैं। ये एक अष्टकोणी मंदिर है जिसकी दीवारें गोलाकार हैं और इन गोलाकार दीवारों में नियमित अंतर की दूरी पर कई आले बने हुए हैं जिनमें प्लास्टर से बनी कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और प्रतिमाएं स्थापित हैं। इनमें से ज्यादातर मूर्तियां आज विस्थापित हो गई हैं। आप मंदिर के आलों के कोनों और छोरों पर इसके कुछ निशान देख सकते हैं। मनियार मठ के परिसर में आप अलग अलग राजकुलों की छाप भी देख पाएंगे, जैसे गुप्त राजकुल का धनुष जो आज पुराने राजगीर के बीचों बीच स्थित है और ये महाभारत काल से जुड़ा हुआ माना जाता है। गर्म पानी के स्रोत भी हैं राजगीर में जिन्हें आप देख सकते हैं। 22 कुंड हैं यहाँ पर और 52 छोटी छोटी नदियां हैं जिनके नाम भी यहाँ एक जगह लिखे आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पर भी जा सकते हैं जिनके बारे में ये मान्यता है कि उनमें रोग निवारण शक्तियां हैं और कई गर्म पानी के स्रोत भी हैं जहां पर आप जाकर आनंद ले सकते हैं इन स्रोतों का। और इस तरह के स्रोत हैं ये जहां पर कहा जाता है कि औषधीय गुण पाए जाते हैं जो कई बीमारियों को दूर करने की ताकत रखते हैं। यहां का सबसे गर्म स्रोत ब्रह्मकुंड है जिसके पास में ही लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। जितने भी लोग यहां आते हैं वो सभी इस कुंड में स्नान करने के बाद इस मंदिर के दर्शन करते हैं। आप चाहें तो टमटम घोड़ा गाड़ी का भी आनंद ले सकते हैं। राजगीर में घूमते वक्त आप अपने आसपास नजर आते रंगीन और ऊंचे ऊंचे टांगों को बिल्कुल अनदेखा नहीं कर सकते। यहां के टांगे बहुत ही आकर्षक होते हैं और इन टांगों पर एक खास इन टांगों का एक खास अड्डा होता है जहां पर इन्हें खड़ा किया जाता है जिसे टमटम पड़ाव कहा जाता है। और यहां पर कोई भी टांगा किराए पर लेकर शहर में जहां चाहें आप घूम सकते हैं। यहां का हर टांगा सुंदर रूप से सजाया गया होता है और हर टांगे का अपना एक नाम होता है। सजावट के साथ इन टांगों में घुंघरू या फिर छोटी छोटी घंटियां बांधी जाती हैं। जब भी टांगा चलता है तो घुंघरू एक अलग ही तरह की ध्वनि देते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लगती है सुनने में। जैसा कि अभी आपने सुना ना इस गीत में, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, तो उसमें भी अगर आपने महसूस किया हो तो घोड़े की टापों जैसी आवाज को इस्तेमाल किया गया है, तो वो भी संगीत का एक खूबसूरत धुन तो जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जब घोड़े चलते हैं और उन पर घंटियां बजती हैं तो ये सचमुच ऐसी ही ध्वनि महसूस होती है। और यहाँ के सभी टांगे एक जैसे हैं लेकिन उनका श्रृंगार जो है वो अलग अलग है, बहुत ही लुभावने लगते हैं। इस शहर में कम से कम गाड़ियां हों जिससे प्रदूषण भी नियंत्रण में रह सके, इसी उद्देश्य से इन टांगों को यहाँ पर जगह दी गई है। और इसके अलावा यहाँ के नज़ारे जब आप इन पे सवारी करते हैं तो सचमुच आपका दिल जीत सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ तो और भी बहुत सारी प्लेसेस हैं यहाँ देखने के लिए, लेकिन अगर वक्त बचा तो ज़रूर बताऊँगी। फिलहाल एक गीत आप तक पहुँचाती हूँ जिसका इंतज़ार आप बहुत देर से कर रहे हैं। अभी इससे पहले आपने गीत सुना था ना, वो था नया दौर फिल्म से रफ़ी साहब और आशा जी की आवाज़ में, और अब ये गीत गाइड फिल्म से लता जी की आवाज़ में।

तो भाई आपको जल्दी जल्दी से बता दूं, और भी बहुत सारी प्लेसेस हैं यहाँ पर देखने के लिए। कांच का पुल है, राजगीर में घूमने के लिए बेहतरीन जगहों में से एक है, बहुत आकर्षक है, अलग वास्तुशिल्प चमत्कार है ये। और पुल की जो लंबाई है वो लगभग 85 फीट चौड़ी है, 6 फुट लंबी है, और अपने आप में एक नेचर सफारी पार्क के अंदर स्थित ये पुल बहुत ही खास है। आप चाहें तो वेणु वन जा सकते हैं। 2500 साल पूर्व भगवान बुद्ध को उपहार स्वरूप दिया था राजा बिंबिसार ने ये वन, ये भी अपने आप में बहुत खास है, इसे भी आपको जरूर देखना चाहिए। साइक्लोपियन दीवार है जो कि 4 मीटर चौड़ी है और 2500 साल पुरानी है। इसकी लंबाई लगभग 40 किलोमीटर है और ये शहर को घेरे हुए है, तो ये भी आपको जरूर देखनी चाहिए। मौर्यों द्वारा शहर को मजबूत बनाने के उद्देश्य से इन दीवारों का निर्माण करवाया गया था। और अगर मैं बात करूं तो हॉट स्प्रिंग्स, राजगीर में प्रचुर मात्रा में गर्म पानी के झरने हैं, ये भी आप देख सकते हैं, इनके भी स्नान का आप आनंद ले सकते हैं। और इसके अलावा राजगीर में घूमने के लिए प्रमुख स्थानों में से एक इन्हें माना जाता है। इनका संबंध महावीर और भगवान बुद्ध के साथ प्राचीन भारत से भी जुड़ा हुआ है। घोड़ा कटोरा झील है यहाँ पर, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। पर्यटक इसे राजगीर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक मानते हैं, क्योंकि इसकी पहली झलक ही दिल जीत लेती है और झील बहुत ही खूबसूरत दिखती है। इसके चारों ओर घूमना, मनमोहक तस्वीरें लेना आपके लिए सचमुच बहुत खास होगा। सिलाव का खाजा एक जगह है, यहाँ पर भी आप खाने के लिए जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये सिलाव का खाजा एक तरह की डिश है जो छोटी सी जगह है यहाँ पर मिल जाती है खाने के लिए। और मैं अगर बात करूं तो बिहार का एक तरह का मीठा और नमकीन पदार्थ है ये, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ बिहारी लोगों का सबसे पसंदीदा खाद्य पदार्थ इसे माना जाता है। जब भी आप इस शहर से गुजरते हैं तो आपको यहाँ हर जगह सिर्फ खाजा की दुकानें दिखाई देंगी। अगर आप कभी यहाँ गए हैं तो इस स्वादिष्ट व्यंजन का लुत्फ जरूर लीजिएगा। ये एक राजगीर नालंदा के बीच एक छोटी सी जगह है सिलाव, यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाता है। और अगर मैं बात करूं इस जगह की तो अपना धार्मिक ऐतिहासिक महत्व तो है ही। विश्व शांति स्तूप, गर्म जल के कुंड, नेचर सफारी, ग्लास ब्रिज, बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर देख सकते हैं आप। राजगीर महोत्सव यहाँ का एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव है जो पर्यटन के लिहाज से यहाँ पर लोगों को आकर्षित करता है, तो ये भी आपको एक बार जरूर इसमें शामिल होने की कोशिश करनी चाहिए। अगर मैं बात करूं हरियाली और शांत वातावरण की, तो यहाँ का वातावरण जो है वो लोगों को बहुत पसंद आता है और इसीलिए लोग यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं और साल भर यहाँ पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। हाँ, अब आपको बता दूं कि यहाँ पहुँचना कैसे है। अगर आप बाय एयर यहाँ पर पहुँचना चाहते हैं तो गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो यहाँ का नज़दीकी हवाई अड्डा है, यहाँ पर आप आसानी से पहुँच सकते हैं। और गया से टैक्सी या बस आसानी से मिल जाती है जो लगभग 78 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप यहां से आगे की यात्रा कर सकते हैं। अगर आप ट्रेन से यहां जाएं तो राजगीर रेलवे स्टेशन है। पटना और बिहार के अन्य प्रमुख शहरों से राजगीर के लिए सीधी ट्रेनें चलती हैं, जैसे बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस जो पटना से लगभग 2 घंटे में पहुंचाती है यहां पर। और इसके अलावा कनेक्टिविटी देश के बाकी हिस्सों से भी काफी अच्छी है इस जगह की। अगर मैं बात करूं बाय रोड यहां पहुंचने की, तो बिहार राज्य पर्यटन निगम और निजी बसें पटना, नालंदा और बाकी शहरों से राजगीर के लिए चलती हैं। कैब और टैक्सी भी आपको आसानी से उपलब्ध है यहाँ पर। लगभग 110 किलोमीटर की दूरी के लिए पटना से राजगीर के लिए कैब आसानी से मिल जाती है। और यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय अगर मैं कहूँ तो अक्टूबर से मार्च के बीच मौसम काफी सुहावना रहता है। अक्टूबर में राजगीर में महोत्सव भी होता है, राजगीर महोत्सव, इसका भी हिस्सा आप बन सकते हैं। और अगर आप अभी जाएं तो जो मलमास मेला है, आप इस आयोजन को भी देख सकते हैं। तो भाई अपने आप में बहुत ही खास है ये जगह। 3 धर्मों का संगम है राजगीर, हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों के लिए पवित्र स्थान है ये। इन धर्मों से जुड़े लोग तो यहाँ जाते ही हैं, लेकिन वैसे भी देश विदेश से सैलानी यहाँ पहुँचते हैं, इस जगह की खूबसूरती को देखते हैं, निहारते हैं। और यहाँ पर बहुत कुछ है देखने को, पर वक्त अब मेरे पास बहुत कम है, तो जल्दी से एक और गीत आप तक पहुँचाती हूँ और इस गीत के बाद आगे क्या है जरूर बताऊंगी।

0: भाई अब वक्त हो चुका है 11:59:17, यानी ये वक्त है मेरे जाने का, आपसे विदा लेने का, लेकिन इस वादे का भी कि अगली बार फिर किसी रोज किसी और सफर में होगी आपसे मुलाकात, और तब तक के लिए आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस लेती है आपसे विदा। और आप अपना ऐसे ही ख्याल रखिए, गर्मी का मौसम है, पानी पिए बिना घर से बाहर मत निकलिए, खुद को कवर करके निकलिए। बस हम तो आपकी मंगल कामना करते हैं, और आज मंगलवार के दिन आपसे मुलाकात हो गई, अब कोशिश रहेगी अपने शुक्रवार को फिर से मिलने की। तो मैं चलती हूँ, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, बाय बाय।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा।
2: FM Gold Daily Degree Modak Sange Shangi Akashmani Delene Sanizets Maji Akashmani Lene Shunjik Tain Gimishato Jungi Seruk Zata Jizo Jokisa Petapala Felmelurik Sanchez Lapolin Ina Tamasasunla Shermili Felmelibola Tamangish Kerne Sanizet Nidashusumste Ilulon Sikan ST Perman

कसता सोतन फिल्म बोल तमंगेशकर तंग किशोर कुमार संचला फलिन लुरसोम सावन कुमार यांग लोन्स डेकन उषा खन्ना।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: आप सबको विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार। बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जहाँ पेड़ और पानी साथ हों वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी ऐसा ही है, जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार हों वहाँ जीवन में भी खुशहाली आ जाती है।
3: बहुत बहुत सुंदर संदेश आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों में हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ सरगुजा से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिवा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा।
2: बोरखेड़ा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूणत, नैना जैन, दीपक, मयंक मूणत और चेतन नहाटा।
3: अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का। बड़ी सुंदर प्रतिक्रिया भेजी है, आइए सुनते हैं।
2: नमस्कार। एक सप्ताह में उमंग कार्यक्रम हमें इतनी अधिक जानकारी से समृद्ध कर देता है कि कार्यक्रम की समीक्षा में आपसे किस अंक की चर्चा करें और किस अंक को छोड़ें ये दुविधा हो जाती है, क्योंकि उमंग का प्रत्येक अंक अपनी खासियत लिए होता है।
3: आपने आगे लिखा है, हम हर एक अंक को नियमित रूप से सुनते हैं। 27 अप्रैल सोमवार को भारत की प्रथम महिला पायलट सरला ठकराल के प्रेरक व्यक्तित्व की नाट्य प्रस्तुति सुनी और जान सके कि उनके ससुर श्री के एस शर्मा जी का कितना बड़ा योगदान उनको पायलट बनाने की मुहिम में रहा। आपने आगे लिखा है,
2: 28 अप्रैल को उमंग कार्यक्रम में भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा के अंतर्गत गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था पर सरल शब्दों में पुख्ता जानकारी प्राप्त हुई। 30 अप्रैल को नालंदा विश्वविद्यालय और 1 मई को तक्षशिला विश्वविद्यालय पर दुर्लभ संग्रहणीय जानकारी मिली। उमंग की पूरी टीम को हार्दिक धन्यवाद और आभार।
3: तो कृष्ण कुमार गुप्ता जी, आपको भी हमारा आभार इस प्रोत्साहन से भरे संदेश के लिए। हम आपकी उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाओं की सचमुच सराहना करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है गाँव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी और प्रमोद कुमार डूडी।
3: आप सभी श्रोताओं को संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब प्रस्तुत है हमारी रोचक जानकारी से भरी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। आप सबका स्वागत है श्रृंखला में। श्रोताओं, पिछले कई हफ्तों से हम कर रहे हैं भूगोल यात्रा।
2: हमने रोचक चर्चा की समुद्रों की, वर्षा वनों की और मैंग्रोव वनों की। तो अजीत जी, आज हम अपनी भूगोल की यात्रा में उमंग कार्यक्रम के माध्यम से कहाँ चल रहे हैं?
3: विमलेश जी, आज ही नहीं, इस पूरे सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
2: शीत मरुस्थल, ये कैसी बात हुई अजीत जी? हमने तो अक्सर सुना है कि मरुस्थल गर्म होते हैं और वहाँ रेती रेत होती है।
3: जी विमलेश जी, दरअसल होता ये है कि जब भी हम मरुस्थल सोचते हैं ना, तो अक्सर हमें रेत के टीले और गर्मी याद आती है।
2: बिल्कुल।
3: लेकिन तथ्य कुछ और है।
2: जी।
3: दरअसल मरुस्थल की पहचान गर्मी और रेत से नहीं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि कहा जाए तो कम वर्षा से होती है।
2: जी, तो आज हम किस शीत मरुस्थल की बात करेंगे
3: बताइए।
2: मैंने पढ़ा था कि पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका।
3: जी वो तो है।
2: श्रोताओं, आपको बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। ये दुनिया के सबसे अद्भुत स्थानों में से भी एक है। इसके बारे में जानना ऐसा है मानो किसी दूसरी दुनिया के बारे में जानना।
3: जी विमलेश जी, श्रोताओं, यहाँ सालाना 50 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसका क्षेत्रफल 14.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 1.42 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ लगातार हिमपात होता रहता है।
2: जी श्रोताओं, इसे पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है।

0: यहाँ का सबसे कम तापमान लगभग -90 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। जरा सोचिए, ऐसी ठंड के यहाँ सांस लेना भी एक चुनौती है। ऐसी ठंड है इस जगह पर कि यहाँ के वाहनों के और अन्य मशीनों के इंजनों को भी हमेशा चालू रखा जाता है, क्योंकि इंजन यदि बंद कर दिया गया तो ईंधन मात्र 3 सेकंड में ही जम जाएगा।
1: और श्रोताओं, साथ ही साथ इनकी बैटरीज भी काम करना बंद कर देंगी।
0: जी,
1: आपको बता दें कि यहाँ के लिए वाहन विशेष रूप से बनाए जाते हैं।
0: यहाँ की दो और बेहद रोचक बातें, पहली ये कि यहाँ के कुछ इलाकों में साल भर अक्सर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी गति लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, इतनी तेज कि इंसान भी खड़ा नहीं हो सकता।
1: तो ये तो हुई पहली रोचक बात, अब आइए करते हैं दूसरी रोचक बात क्या है।
0: दूसरी रोचक बात ये है कि यहाँ कई ऐसी घाटियां हैं जहाँ बर्फ बिल्कुल नहीं पड़ती, ये ड्राई वैलीज कहलाती हैं। वैज्ञानिक इसे प्रकृति का अनोखा करिश्मा मानते हैं कि जहाँ पर्वत पर चारों ओर बर्फ पड़ रही है, उन्हीं पर्वतों की घाटियों में भला बर्फ क्यों नहीं पड़ती।
1: विमलेश जी, हमारा उमंग प्रसारण शैक्षिक है
0: जी,
1: तो जरा बच्चों की भी बात कर लें। एक प्रश्न है मेरा कि क्या अंटार्कटिका के शीत मरुस्थल में बच्चे स्कूल जाते हैं?
0: अजीत जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर है, यहाँ भी बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ कोई स्थायी जनसंख्या तो नहीं है, सिर्फ कुछ शोध केंद्र हैं जहाँ शोधकर्ता वैज्ञानिक और अनुसंधान केंद्र के कर्मचारियों और कुछ सैनिक अपने बच्चों के साथ रहते हैं। यहाँ के कुछ क्षेत्रों में विशेष स्कूल चलाए जाते हैं जिनमें बच्चे पढ़ते हैं।
1: विमलेश जी, आपने कहा कि यहाँ अनुसंधान केंद्र है।
0: जी,
1: हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि वैज्ञानिक यहाँ किस प्रकार का अनुसंधान करते हैं।
0: अजीत जी, यहाँ अनुसंधान के मुख्य विषय हैं जलवायु, शीत मरुस्थल के जीव और अंतरिक्ष इत्यादि।
1: जी,
0: श्रोताओं, ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि शीत मरुस्थलों में भारतीय वैज्ञानिकों के दल ने भी 9 जनवरी 1982 को कदम रखा। भारत के अंटार्कटिक अभियान को ऑपरेशन गंगोत्री भी कहते हैं। बाद में यहाँ भारत द्वारा दक्षिण गंगोत्री के नाम से शोध केंद्र की स्थापना हुई।
1: तो अब विमलेश जी, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, हमारे श्रोताओं की ओर से है ये। मेरा प्रश्न है कि अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में पाए जाने वाले जीव कौन कौन से हैं?
0: अजीत जी, यहाँ पाए जाने वाले जीवों में मुख्य हैं पेंगुइन, जो शानदार तैराक भी होते हैं, ध्रुवीय भालू, सील, व्हेल और कई समुद्री पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं, जो यहाँ के कठोर वातावरण में भी जीवन को बनाए रखते हैं।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सच तो ये है कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, जीवन अपना रास्ता बना ही लेता है।
0: जी,
1: यही तो जीवन की खूबसूरती है।
0: बिल्कुल।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी।
0: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
1: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए।
1: प्रश्न का उत्तर भेजने के लिए आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे ईमेल के पते पर भी हमें संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: आप CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप NCERT की ध्वनि पाठ्य पुस्तकों को सुनना चाहते हैं तो आप इन्हें दीक्षा और NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर भी सुन सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है लुई पाश्चर।
0: इस कार्यक्रम में महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उनकी उन खोजों के बारे में बताया गया है जिनके कारण खाद्य सुरक्षा और जीवाणुओं से होने वाले विभिन्न रोगों के प्रति चिकित्सा विज्ञान की अवधारणा में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए।
2: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पाश्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
3: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पाश्चर आई वुड बी नथिंग।
2: 27 दिसंबर 1892, सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
4: Ladies and gentlemen,

0: मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे।
1: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है। उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
2: रिमेम्बर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
3: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
1: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
3: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
1: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
4: देखो, मुझे पाश्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते।
5: हाँ, ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
4: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
5: हाँ, मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
4: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
1: सन 1831 में जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए।
6: चलो,
7: अरे भेड़िया, अरे भेड़िया।
1: लुई पाश्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
3: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लुहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लो

0: गड्ढे की छड़ से दाग देता था।
1: चलो चलो चलो
2: चलो लोहा गर्म हो रहा है,
3: ये लीजिए बिल्कुल लाल हो गया।
4: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पाश्चर घबरा गए।
0: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
4: 21 वर्ष की आयु में लुई पाश्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में 4th स्थान प्राप्त किया।
0: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पाश्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
4: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पाश्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
0: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
4: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पाश्चर को बुलाया और कहा,
5: लुई पाश्चर
6: सर,
5: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
6: कहिए सर।
5: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहां बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
6: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
5: ठीक है।
0: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पाश्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
4: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है। और अच्छी बात यह है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयां आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन है।
0: पाश्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
4: इस जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
0: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी, जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए ये विधि काफी सफल रही।
4: सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया, जिससे पाश्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
0: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया, जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
4: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
0: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
4: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
0: तो फिर उन्होंने क्या किया?
4: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
7: अरे आजा आजा आजा।
8: हाँ,
7: इंजेक्शन लगा दूं?
8: आई एम श्योर 100% सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगी और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी। हाँ।
0: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताई।
9: सर सर, ये टेलीग्राम।
8: अच्छा, लाओ दिखाओ। हाँ, अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
9: क्या हुआ सर?
8: देखो, टीके वाली सभी भेड़ें बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
9: कांग्रेचुलेशंस, बधाई हो सर।
8: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़ें मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं?
9: यानी आपका प्रयोग सफल रहा।
8: हाँ चार्ल्स।
0: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
4: इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
10: सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ, पैरों और जांघ पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
8: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
10: डॉक्टर साहब, कुछ तो करिए वरना मेरा बेटा।
8: देखिए आप,
10: ओ गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
8: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ,
10: मेरा
8: अच्छा,
10: बेटा।
8: अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा। हाँ।
0: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
4: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
0: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
4: पाश्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े

0: होकर वर्षों तक पाश्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
1: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाज़ियों ने पाश्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पाश्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पाश्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
0: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो जो प्रयोग और नए विचार पाश्चर के दिमाग में थे वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पाश्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
1: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना।
2: इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता।
1: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पाश्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पाश्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रेडम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, My grandfather was the gentlest with the goodness of his heart, most affectionate and sensitive individual. He was a humanist, always working towards the improvement of the human condition.
3: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लुई पाश्चर और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो मुझे यानी अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशातिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशातिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल हैं। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दें तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिया है। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण और समय सीमा से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। रिलायंस कम्युनिकेशंस ग्रुप के पूर्व प्रबंध निदेशक अमिताभ झुनझुनवाला को सीबीआई ने करोड़ों रुपए के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला भारतीय स्टेट बैंक से लिए गए 1200 करोड़ रुपए के सावधि ऋण, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लिए गए 500 करोड़ रुपए के लेटर ऑफ क्रेडिट और सिंडिकेट बैंक से लिए गए 350 करोड़ रुपए की क्रेडिट सुविधा के कथित दुरुपयोग से संबंधित है। एजेंसी ने पहले ही 16 व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद में 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

जय हिंद। दोपहर के इस वक्त का प्रोग्राम सुनने वाले सभी फौज भाइयों का तह दिल से खुशामदीद करती हूँ। फौज भाई सुनेंगे चंद फिल्म नगमें। तो लीजिए प्रोग्राम का आगाज़ बादल इस फिल्म से करने जा रही हूँ, कविता कृष्णमूर्ति और अन्नू मलिक की आवाज़ों में। समीर के लिए किस नगमे के मौसिकार अन्नू मलिक।

अदनान सामी की आवाज़ में अभी आप सलाम इश्क फिल्म से नगमा सुन रहे थे। लीजिए प्रोग्राम का अगला नगमा सलाम फिल्म से पेश करने जा रही हूँ, कुमार सानू और आशा भोसले की आवाज़ों में। मदन पॉल के लिखे इस तरह के मौसिकार नदीम श्रवण।

0: the ceasefire, and clashes have continued in parts of southern Lebanon. U.S. President Donald Trump has described the development as an agreement to stop all shooting following talks with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and contact with Hezbollah through mediators. However, Israeli officials have taken a more cautious position, saying military operations could resume if Hezbollah attacks persist. Soon after the announcement, the Israeli military reported intercepting projectiles fired from Lebanese territory, highlighting the fragility of the arrangement. More from our Dubai correspondent.
1: The fragile Lebanon de-escalation is unfolding against a far more dangerous diplomatic backdrop. Iran has formally suspended all dialogue and exchange of messages through mediators with the United States, citing Israeli operations in Lebanon, which Tehran had flagged as a precondition of any ceasefire agreement. Iranian sources linked to the resistance front have placed on their agenda the complete closure of the Strait of Hormuz and the activation of additional fronts, including the Bab el-Mandeb Strait at the mouth of the Red Sea, with the stated aim of punishing Israel and its supporters. The fighting in Lebanon presents a major obstacle in the emerging deal between Washington and Tehran, as Iran is insisting that any agreement must include a ceasefire in Lebanon. Vinod Kumar for Akashvani News from Dubai.
0: A delegation of Nepal's ruling Rashtriya Swatantra Party, led by party president Rabi Lamichhane, met BJP President Nitin Naveen in New Delhi today. The delegation was also scheduled to meet other senior leaders of the party. The visit seeks to initiate party-to-party engagement between RSP and BJP and provide an opportunity for exchange of views on organizational practices, democratic processes, and people-centric political outreach. The India Meteorological Department, IMD, has issued an orange alert for thunder squall conditions over Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh during the day. While heavy rainfall will occur over interior Karnataka, Kerala, Mahe, Lakshadweep, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till tomorrow. Thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds are likely over Haryana, Chandigarh, Delhi, Chhattisgarh, Jharkhand, Gujarat, Goa, Maharashtra, Andhra Pradesh, Telangana and West Uttar Pradesh for the next 2 to 3 days. Hot and humid weather conditions will prevail over entire northeast, including coastal Andhra Pradesh, Odisha and sub-Himalayan West Bengal today. On to sports and women's cricket, the third and final T20 international of the series between India and England will be played at Taunton in England tonight. The match will begin at 11 p.m. IST. The series is level, with India winning the first match in Chelmsford by 38 runs and England levelling the series with a 26-run victory in Bristol. In hockey, India registered a commanding 4-1 victory over Korea in their third Pool A match of the Men's Under-18 Asia Cup in Kakamigahara, Japan. Captain Ketan Kushwaha scored in the third and the 36th minute. Varinder Singh and Shah Rukh Ali scored the other two goals. Korea's lone goal came through captain Yoon Jae-yok. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu addresses tribal beneficiaries of scholarship schemes at Rashtrapati Bhavan, emphasizes social, economic and educational progress of all sections of society for true development. Government notifies Immigration and Foreigners Amendment Rules 2026 with key changes in registration timelines and the appeals mechanism. Chief Justice of India, Justice Surya Kant, administers oath of office to 5 new judges of Supreme Court. Orange alert issued for thunder squall conditions in Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh today. And in women's cricket, third and final T20 international between India and hosts England to be played in Taunton tonight. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar. Akashvani se dopahar samachar ke saath main Vishal Sharma. मुख्य समाचार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
3: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ने रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
2: राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों के युवाओं को सशक्त बनाने और उनका उत्थान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
3: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य के प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तो सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है बल्कि ये युवाओं को सपनों को देखने का अधिकार देती हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्तियां उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलती हैं जिनमें अपार प्रतिभा है लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वे प्रगति करने से वंचित रह जाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि युवा राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्ज्वल भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी जड़ों को न भूलें।
3: भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य के प्राप्ति में आप जैसे युवाओं की अहम भूमिका है। मुझे विश्वास है कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं समाज और राष्ट्र के निर्माण में आपका सक्रिय योगदान रहना चाहिए।
2: गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण, समय सीमा और अपील प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशाटिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशाटिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमेरिका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। वे आज शाम लोकभवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द या दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल है। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। केरलम विधानसभा में कांग्रेस नेता शानिमोल उस्मान उपाध्यक्ष चुने गए हैं। शानिमोल उस्मान को 99 वोट मिले जबकि विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मोहसिन को 34 वोट प्राप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी के तीनों सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान केवल UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह आतंकवादी गिरोह नौजवानों को अहम व्यक्तियों और संस्थानों की निगरानी करने, उनकी हत्या करने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर बमबारी करने, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की हत्या करने और उनके कार्यालयों और मुख्यालयों पर हमला करने जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। खुफिया जांच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों का उपयोग करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। शहजाद भट्टी के गिरोह ने मोहम्मद शेख को एक राजनीतिक पार्टी की महिला नेता को धमकाने और उसकी हत्या करने का काम सौंपा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रवर्तन निदेशालय ED मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट में 20 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने सलीम इस्माइल डोला और उसके सहयोगियों द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठित मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ ये कार्रवाई की है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। निदेशालय ने विदेश से लाए गए 2 किलो 600 ग्राम सोने को जब्त किया है जिसकी कीमत लगभग 4,20,00,000 रुपए है। खुफिया जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने दुबई से आए 2 यात्रियों को पकड़ा। मामले की जांच की जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में 1 वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आज तेलंगाना का स्थापना दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेलंगाना को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परिश्रमी लोगों का साथ मिला है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से संपन्न है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली संस्कृति साहस, दृढ़ संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुए संघर्ष विराम पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। समझौते के बाद क्षेत्र में तनाव कम होने की संभावना थी, लेकिन हाल के सैन्य उल्लंघनों से इसकी स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
3: ईरान ने लेबनान में इजरायली हमले जारी रहने पर अमेरिका के साथ सभी प्रकार की बातचीत रोक दी है। अमेरिका के साथ किसी भी युद्ध विराम समझौते के लिए ईरान ने लेबनान पर इजरायली हमले रोकने की पूर्व शर्त रखी थी। उसने होर्मुज जल डमरो मध्य पूरी तरह से बंद करने और लाल सागर के मुहाने पर स्थित बाब अल मंदेब जल डमरो मध्य सहित अन्य मोर्चे खोलने की बात कही है। ईरान का कहना है कि लेबनान और गाजा में इजरायली हमले पूरी तरह बंद होने तक अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। लेबनान में जारी संघर्ष अमेरिका और ईरान के बीच संभावित विराम समझौते में एक बड़ी बाधा बन चुका है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेगा। मुलाकात का उद्देश्य दोनों पार्टियों के बीच लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और जन केंद्रित राजनीतिक पहुंच पर विचारों का आदान प्रदान करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में पहले गिरावट और फिर आधा प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 508 अंक के उछाल के साथ 74,775 जबकि निफ्टी 140 अंक की वृद्धि के साथ 23,523 पर कारोबार कर रहा था। और अब बात खेलों की। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज बारिश का अनुमान है। अगले 2 से 3 दिन तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: آج آکاشوانی لینے جن جگتائن گمی چوتوت گی ستان پچھا رکا ستا لدق سلو ریک سانچس لپولین انہا سانسنس کن لاستان زنیان رولی سلکنی اجنگ لگون سنزد

Rapat ki no no no mo kun ta ni mo to.

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो जुले
1: हेलो जुलेनीन, कसा सुमलते ले?
0: या जुले खमजा
1: कसा थिंग जोंग पोले खमजा जुगसा थिंग जोंग पोले
0: ठीक ठाक ठीक
1: या कसा थिंग जोंग पोले धीरिया नसुल ची दुख संस्कार राले
0: ठाक मौसम ठीक ठाक लेता जहाँ खाची ने उसी और जहाँ खाची ने जिंगो तो छोटे हो जाने था मन धां दिली छूट ठीक ठाक बात तो जाने जाने
1: या लेते ने धीरिया कलू संगीन डाले
0: दिन में आज हम उरुम नमजल सारे लूची साला ले निमा चोला संदूक से लेंगे और जर फोड़ा यहाँ से कम बोले
1: ओले ओले या दिन साल लुहा ले
0: दावा चोला जोगा चोगा गांव से छुलछुल डोला यहाँ से कम बोले
1: दावा चोला ले
0: दावा चोला चोगा गांव से छुलछुल डोला यहाँ से कम बोले
1: या कसा
0: यानी ठोपा खाची की होता है लेकर ने
1: कसा कसा ठोपा युद्ध संकन या कसा अच्छा नहीं मोलंग ले
0: ओले दावा जंग पो यो लुजा तो ये संजीन लगता
1: या ले
0: सलमा आमो संजीन जंगमो
1: कसा ले
0: संजीन देचिन किन्हें जन्यां डोलमा पीचा दुर्जे आमो टुकचा नंग आमा यंग डोल चोलम सारे युद्ध ले
1: कसा कसा कसा तेने सिंग जांग बोले तेने येरा दंबो रंग इंग तंपा तुझे चला तुझे मजा फोन सर्चे लाले तेने तेने येरा नंग येरा उन्हें ठोपा उन्हें फरमाइशी का तेने गए ग्रुप नाम जाले लूंगी संचे ला पुलिन तेने ये रेवाचन येरा मल देमो सने ना लाले
0: मर देवो तुझे चले तो ये सामान लच्छत तो सामान जुले
1: कसा जुले

0: हेलो हेलो जुले,
1: फार्मासी देता नु नो
0: कसा? हेलो जुले ने इन का ने मुलतेन ले सु मुलतेन ले
1: चेम दे ने मेरे दिन दे कर दे जान माओ फार्मासी माओ भाया ता तालिन फार्मासी तो हो जो
0: कसा मेरे दिन ले खमजा उजुक साले
1: ठीक हो दे फास खला जो ताना तंदो ता गप्पो संभाया फसी ठीक हो दे
0: कसा ले या ले दिरिया कालू संजीन नगले
1: जलुंग दंग जलमो ये पूछे ना कंदी सुमसक और कंदी सुमसक मानता है लाने युक्ति इन तेने सेल जी निमा तुम जी दवा तेने सेल जी जलिंग जाने लुंगने लुंग जी कौन से दवा नॉन जो हुआ
0: कसा यूसुल अन स्विसन का निन्नो मेरे जिनले
1: सालकर निमाने ताते निमाने तांतन पता नहीं जा से लामा सोत पानी नो गया
0: कसा लामा सोत पाला ने
1: जलूं दांग दाल मुझे पूछे ना कंडी सुनका कंडी सुनका मैं चाहे लानी युक्ति कंडी सुनका मैं कहीं हो ते यंत्र ना सबके दर्जे से युक्ति इंदर कंडी
0: कैसा मेरे जिले कल्टे सुना ये लुकन मतों ना मेरे जिले का लुसन ये डाले
1: तेरे माने जबरो जिसका लंबी पाले लाने जबरो जिस जम्मू जिके अलाव हम संग माने पन्ने दर्शन दिखते हो रिगोंसे माना यंग चल संग दरबार और कंडिशन लग जो ना जाता ही प्लानेट तो फिर जिंदा
0: कैसा है रिजन लेते ने ये लूसन का नियंग थोपा जुकते डाले
1: पक्का माने मैं या गरम किसी को मन ये ताकि मैं माने तो देना माने जब थोड़ी देना यंग दंगन मालू वो काम तो बात नहीं यंग सुरिंग पुंजी चाइना चांग सेंस बजुआ
0: कैसा मेरे जिन लेते ने निरा फरमाइश का ते ने अजूक लमिस तो पे लू संचित ला पुलेन कल्टेस ना यू मत अपना ये जबरिक संचित ला पुलेन हाल अल्दे में गले
1: कटिंग से जुले
0: कैसा जुले

नादांस्कर्मा ngapchungaika आकाशवाणी दिल्ली ने टुगेका हिंदी तंग अंग्रेजी नंगा नचुल टुकतांस्कर्मा श्रीका गमिल पिस्कत लुन टिक्रम संचेस लफलन टिक्रम फुलकन दशके टोलकर टिक्रम ए कोडिक सतकन सोना मंगचुक टुकतांस्कर्मा जिपचुका मखमी क्योक्तोंगोने पिया टिक्रम नंगा फिल्मे लोरेक संचेस लफलन लदाख सनंगा नचुल तंग डेलचेत सनेजदिन छुचोत दुनतांस्कर्मा चोएका दुनतां भेदेखत सिरिंग लामोतंग टोपागुने सेलकनी लोरेक संचेस लफलन आकाशवाणी श्रीनगर ने दुनतांस्कर्मा जिपचुका उर्दिनंगा नचुल तंग तपसरा थोड़े छाने छुचोत रिग्यादिका बल्ती दिक्रम मेंदोगे छरबो संचेस लफलन दिक्रम ए कोरिक सतकन सोना मंगचोक रिग्यातंग भेदेका सोनम छोरोल तंग टशियंग में सेलकनी जबरे लोरेक संचेस लफलन आकाशवाणी दिल्ली ने रिग्यातंस्कर्मा जिपचु जाएका समाचार संध्या न्यूज एट नाइन तंग उर्दिनंगा नचुलगुन यहाँ डिग्रम स्पेस तिंग जुपेका थोड़े छाने छुचोत रुगुदांग फेदिका समस्तन गया छोतंग ठोपागुने सेलकनी जुंगलो रेक संचेसला फुलिन कसा इगुनिन पेन गजे दिरिंगे डिग्रम निस्पातंग थोड़े से डिग्रम गुने स्कोर गुन नजे आकाशवाणी लेने जुंजिक तंगिन फिदो छुचोत टुक छादुक कसदा आकाशवाणी दिल्ली ने सुनला हिंदी अंग्रेजी नंगा नछुल सनजात

0: भारत ने कहा है कि नेपाल और भारत के द्विपक्षीय संबंधों में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत नेपाल सीमा को लेकर टिप्पणी और उसके बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के बारे में पूछे गए सवाल के उत्तर में कही। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% सीमांकन हो चुका है।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अवांछित संदर्भों को भी खारिज किया। श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। ये वार्ता ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, दवा और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर केंद्रित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। दोनों नेताओं ने भारत दक्षिण अफ्रीका द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सार्थक वार्ता की। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउं लाइन आज मुंबई पहुंचे। आज शाम लोक भवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। ये मुलाकात भाजपा को जाने कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। नई दिल्ली में आज जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सतत विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें। केंद्र सरकार ने आव्रजन और विदेशी नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार जो विदेशी नागरिक भारत में 180 दिन के लिए आते हैं और अपने वीजा की अवधि बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें वीजा की समाप्ति से पहले ही अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ये पंजीकरण पहले 180 दिन की अवधि पूरी होने के बाद 14 दिन के भीतर कराया जा सकता था। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, न्यायमूर्ति चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति संजीव सचदेव और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने पिछले महीने 23 अरब 20 करोड़ लेन देन का रिकॉर्ड बनाया है। इस उपलब्धि पर वित्तीय सेवा विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से नागरिकों को डिजिटल भुगतान को अपनाने के लिए धन्यवाद दिया। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, यश कादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा अंतिम टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

Dagsangi Sharangi Jingpe Songska Dikrim Sanatats Dikrim Pulkanin Pin Hasina Bano Yang Dikrimi Kodik Zatkanin Pin Sonamang Chok Medium Wave 284.9 meters Yani 1053 kilohertz Aur FM 101.1 megahertz Par Hum Akash Vani Ke Liye Kendr Se Bol Rahe Hain Sham Ke 6:41 Ho Rahe Hain लीजिए प्रस्तुत है फौजी भाइयों के लिए फिल्मी गीतों का एक कार्यक्रम।

जय हिंद। स्वागत है हमारे प्यारे फौजी भाइयों का आज के इस वक्त के कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में फौजी भाई सुनेंगे फिल्मी गीत। तो आइए कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं सोनू निगम की आवाज़ में साथिया फिल्म से गीत। गीतकार हैं गुलजार और संगीतकार ए आर रहमान।

आइए अगला गीत सुनते हैं अलका याग्निक की आवाज़ में हम तुम फिल्म से। इस गीत के बोल हैं प्रसून जोशी के और इसे संगीत से संवारा है जतिन ललित ने।

फौजी भाइयों के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लीजिए अगला गीत सुनिए मिशन कश्मीर फिल्म से, शंकर महादेवन, जसपिंदर और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में। राहत इंदौरी के लिखे इस गीत को धुन से संवारा है शंकर एहसान लॉय ने।

हमसे गीत शान कविता कृष्णमूर्ति और सुब्रमण्यम की आवाज़ों में, गीतकार थे जावेद अख्तर और संगीतकार थे शंकर एहसान लॉय। फौजी भाइयों के लिए फिल्मी गीतों का एक कार्यक्रम आप आकाशवाणी के लिए केंद्र से सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम में लीजिए अगला गीत सुनिए, इश्क विश्क फिल्म से कुमार सानू और अलीशा चिनॉय की आवाज़ों में। समीर के लिखे इस गीत को धुन से संवारा है अनु मलिक ने।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए जब प्यार किसी से होता है फिल्म से गीत, कुमार सानू की आवाज़ में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार जतिन ललित।

0: Rinjiktain. Kasita tu sot sa pagisting ni Ladak sana na tsulang testing ni Delchat sana za.
1: प्रिय बीएसएनएल ग्राहकों, लद्दाख में बीएसएनएल ने अपने 4G टावर्स की सर्विसेज शुरू कर दी हैं। ये मौका बिल्कुल न गंवाएं। बीएसएनएल का पॉइंट ऑफ सेल बनकर एक्स्ट्रा इनकम बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी बीएसएनएल ऑफिस से संपर्क करें।
2: लद्दाख नंगपे छोगदू पोमे यल्ला के टारी गेका पोजा जीपे छेस निशुष नाय अंगा छिलजा जुने छेस स्ट्री जागा खरदोंगला थेते नासा सोसेका खनपो दोर्जे ठिनलेस तुमखारे उठी देनांगा रियो संगशोत साला जाची सिनो ते फ्या मेमांग्स कुने लद्दाख नंगपे छोगदू पोमे यल्ला गे छांगा संगजास गुन क्यों आजा चेसला जुआ फुलदो यांग पोजा जीपे छेस निशुर ग्यात निशुर गुतांग नामगा यांग मा छिलजा जुने छेस चुक्सुम चुबशी तंग चोंगे जाकुलना दिस्की छाले तुपस्तान लिंग गोनपे नांगा डोलमा सगडुप जाची सिन जुदो मेमांग्स कांगमांग थुशेसला छोस्कुल कैप्टन Zato, Irings La, Taldan Mimangs Kunipia, Soljatang Dontang at Darik Zatio Judo.

के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। समाचार विस्तार से। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए 1 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति 1 महीने के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं।
1: पोर्टल शुरू होते ही इसे बड़े स्तर पर साइबर हमलों के जरिए इसकी सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया गया। CBSE ने बताया कि इन्हीं प्रयासों के क्रम में मात्र 2 मिनट में पोर्टल पर 15 लाख हिट दर्ज की गईं और अनधिकृत रूप से फाइलों तक पहुंचने के लिए 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। बोर्ड ने साफ किया कि उसकी टीमें पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ काम कर रही हैं ताकि छात्रों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा सके। छात्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर CBSE ने प्लेटफॉर्म में और कई सुधार किए हैं। इसके तहत प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और निर्बाध बनाने के लिए सेशन की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
3: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
0: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्से रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि वो अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी।
2: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
4: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
2: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा मशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: महिलाएं बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉकर टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेशी निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सफल परीक्षण स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी के बढ़ती परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं और उन्नत हथियार प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवर, अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनके नियुक्तियों को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अतिक्रमण करने वाली सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्यवाही शुरू की जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति राय बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की सेवानिवृत्ति के बाद शुक्रवार से पदभार ग्रहण करेंगी। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। NTA ने 3 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी थी। पुनर्परीक्षा 21 जून को निर्धारित की गई है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स OTT की नवंबर 2024 में शुरुआत के 2 वर्षों से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्मों को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय

0: आय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
1: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन में सक्षम हो गई हूँ।
2: 2-3 ब्रांचेस।
0: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
3: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी है। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
0: वही मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
4: ये आकाशवाणी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने श्री राहुल सिंह का स्थान लिया है। सरकार ने श्री वरुण भारद्वाज को CBSE में सचिव के रूप में नियुक्त किया है। रूस ने कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिसमें 21 नागरिक मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि देश में नागरिक बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने अमेरिका से यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें भेजने का भी आग्रह किया। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत सेवारत 550 से अधिक भारतीय शांति रक्षकों ने संघर्षग्रस्त देश में नागरिकों की सुरक्षा और शांति स्थापना प्रयासों में उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया। इनमें 53 महिलाएं शामिल हैं। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। हुकूमत ने सीबीएसई की जानिब से ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के लिए खिदमात की दस्तियाबी की जांच के सिलसिले में पैनल तश्कील दिया है। हुकूमत ने लोखंडे प्रशांत सीताराम को सीबीएसई का चेयरपर्सन मुकर्रर किया है। भारत ने नेपाल के साथ बाहमी मामलात के हल के लिए किसी तीसरे फरीक की शमूलियत को मुस्तरद कर दिया है। भारत ने फिजा से जमीन पर वार करने वाले अंदरून मुल्क तैयार करदा रुद्रम 2 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ने अपने आगाज के 2 साल के अंदर अंदर 1 करोड़ से ज्यादा सारेफीन का संगे मील पार कर लिया है। यूक्रेन में रूसी हमलों में 21 अफराद हलाक हो गए हैं। और खवातीन क्रिकेट में आज रात टोंटन में तीसरे और आखिरी T20 बैनुल अक्वामी मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने सीबीएसई की जानिब से ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम सिस्टम खिदमात की खरीद से मुतालिक मामलात की जांच के लिए एक रुकनी कमेटी तश्कील दी है। कमेटी की सरबराही सलाहियत साजी कमीशन की चेयरपर्सन राधा चौहान करेंगी। कमेटी से अपनी रिपोर्ट 1 महीने के अंदर अमले और तरबियत के महकमे को पेश करने को कहा गया है। तलबा को फराहम करदा स्कैंड कॉपियों में पाए गए मामलात के वेरिफिकेशन का अमल और 12वीं जमात के जवाबी पर्चों की दोबारा जांच जारी है। ये सहूलत सिर्फ उन्हीं तलबा को दस्तियाब है जिन्होंने जांच किए गए अपने जवाबी पर्चों की स्कैंड कॉपी हासिल की हैं। तफसील हमारे नामनिगार से।
1: शरपंसन अनासर की जानिब से लगातार साइबर हमलों की वजह से रुकावट के बाद सीबीएसई पोर्टल जल्द ही लाइव कर दिया गया है। ताहम सीबीएसई ने यकीन दहानी कराई है कि वो तलबा की हर तरह से मदद को यकीनी बनाने के लिए लगातार चौकसी बरत रहा है। सीबीएसई ने मजीद कहा है कि तलबा के फीडबैक की बुनियाद पर प्लेटफॉर्म को मजीद बेहतर किया गया है और सेशन टाइम में भी इजाफा किया गया है ताकि कामकाज को ज्यादा आसान तर्ज पर और बिला रुकावट तरीके से अंजाम दिया जा सके। सीबीएसई ने कहा है कि 12वीं जमात के जवाबी पर्चों की दोबारा जांच से मुतालिक उसका पोर्टल फिलहाल 8,000 से ज्यादा सारिफिन की मदद कर रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में सीबीएसई ने बताया है कि 16,000 से ज्यादा तलबा अब तक कामयाबी से अपने मंदरजात पेश कर चुके हैं। सीबीएसई का पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा और ऑफलाइन दरख्वास्तें या मुद्दत गुजरने के बाद दरख्वास्तें कबूल नहीं की जाएंगी। नई दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: इस दौरान सीनियर आईएएस अफसर लोखंडे प्रशांत सीताराम को सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड सीबीएसई का नया चेयरपर्सन मुकर्रर किया गया है। जनाब सीताराम वजारत दाखिला में एडिशनल सेक्रेटरी की खिदमात अंजाम दे रहे थे। उनकी तकरूरी राहुल सिंह की जगह हुई है जिनका बतौर एडिशनल सेक्रेटरी ज़िरात और किसानों की बहबूद के महकमे में तबादला कर दिया गया है। हुकूमत ने वरुण भारद्वाज को भी सीबीएसई में सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। वो आला तालीम के महकमे में डायरेक्टर के फ़राइज अंजाम दे रहे थे। तकरीरों से मुतालिक काबीना की कमेटी ने इन तकरीरात को मंजूरी दी है। सदर जमहूरी द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि तालीम बाख्तियार बनने का ताकतवर वसीला है जो लोगों को खुदकफील बाखबर और बासलाहियत बनाती है। सदर जमहूरिया आज नई दिल्ली में स्कॉलरशिप स्कीम के कबायली मुस्तफदीन से खिताब कर रही थीं। उन्होंने कहा कि हकीकी मानने में तरक्की तभी मुमकिन है जब माशरे के सभी तबकात समाजी इकतसादी और तालीमी तरक्की करें।
2: जुबा हमारे राष्ट्र की शक्ति आशा और उज्जवल भविष्य के प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपने जोड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तो सशक्त समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
0: सदर जमहूरिया ने इस बात को उजागर किया कि हुकूमत की स्कॉलरशिप स्कीमों ने कबाइलियों की जिंदगी में यकसर तब्दीली लाई है और उनके लिए आला तालीम और नए मौके तक रसाई मुमकिन हो पाई है। सदर जमहूरी द्रौपदी मुर्मू ने जोर देकर कहा कि भारत में हुनर की कोई कमी नहीं है और उन्होंने उसे फरोग देने के लिए उसकी निशानदेही करने परवान चढ़ाने और सही मकाम अता करने पर जोर दिया।
2: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ने रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी की गुज़िश्ता 12 साल के दौरान दूरंदेश क़यादत ने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास मंत्र के तहत भारत में खातिरखा तब्दीली लाई है। इस मुद्दत के दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, खवातीन और नौजवानों की फलाह व बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी न्यूज़ गुज़िश्ता 12 बरसों के दौरान अहम शोबों में हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम के बारे में खुसूसी फीचर पेश कर रहा है। आज ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम के बारे में हम बात करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: गुज़िश्ता 12 बरसों के दौरान भारत में ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने के सिमत में नुमाया तब्दीली हुई है, जो हुकूमत की मुसलसल कोशिशों का नतीजा है। इन कोशिशों का मकसद ख्वातीन को सेहत, तालीम, रोज़गार के मौके, माली शमूलियत और क़्यादत के शोबों तक रसाई को बेहतर बनाना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो 2015 में शुरू की गई थी, ने लाखों ख्वातीन को अपना कारोबार शुरू करने और इसे उसत देने के लिए बग़ैर ज़मानत के कर्ज हासिल करने के काबिल बनाया है। इस स्कीम के तहत रवा माली साल मार्च तक 40 करोड़ रुपए से ज्याद के कर्ज मुस्तफिदीन को फराहम किए गए हैं, जिनमें से 17 लाख करोड़ रुपये ख्वातीन को दिए गए। प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और वुमनिया जैसे अहम प्रोग्रामों ने मुश्तरका तौर पर ख्वातीन की बैंककारी, बचत और कारोबारी प्लेटफार्म तक रसाई को मजबूत बनाया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स खोले जा चुके हैं, जिनमें से तकरीबन 33 करोड़ अकाउंट्स ख्वातीन के नाम हैं। दीपेंद्र सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने जोर देकर कहा है कि भारत और नेपाल के दरमियान बाहमी ताल्लुकात में किसी तीसरे फरीक का कोई रोल नहीं है। वजारत खारजा में तर्जमान रणधीर जायसवाल ने नेपाल के वजीर आजम की भारत नेपाल सरहद से मुतालिक रायजनी और उसके बाद नेपाल की वजारत खारजा की जानिब से जारी करदा बयान के जवाब देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरहद से मुतालिक मामलात के सभी पहलुओं से निमटने के लिए कायम शुदा बाहमी तरीक़ाकार मौजूद है। जनाब जायसवाल ने कहा कि हालांकि भारत नेपाल सरहद के तकरीबन 98% हिस्से की वाजह तौर पर हदबंदी हो चुकी है, लेकिन कुछ हिस्सा ऐसा है जिस पर काम होना है।
3: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: भारत ने जम्मू कश्मीर से मुतालिक पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन मुश्तरका बयान में गैर जरूरी तस्करे को भी मुस्तरद कर दिया है। जनाब जायसवाल ने कहा कि मरकज के ज़ेर-ए-इंतज़ाम इलाके जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अटूट हिस्से हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों के सिलसिले में जिनकी खुद कोई हैसियत न हो, उन्हें कोई बात कहने से गुरेज करना चाहिए। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेल्सी रोड्रिगेज कल से भारत के 4 रोजा दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि उनके हमरा खारजी उमूर, इकतसादी व मालियात, साइंस और टेक्नोलॉजी, मवासिलात व इत्तलात और नकलो हमल के महकमों के वजरा भी होंगे। जनाब जायसवाल ने कहा कि मोहतरमा रोड्रिगेज अपने दौरे के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी से दोतरफा बातचीत करेंगी। इस बातचीत में तवानाई, तिजारत, सरमायाकारी, सेहत देखभाल, अद्वियात और काबिल तजदीद तवानाई जैसे शोबों में इश्तराक के इम्कान तलाश करने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। मरकज ने इमिग्रेशन और गैर मुल्की अफराद से मुतालिक जाब्तों में तरमीमात को नोटिफाई कर दिया है। ये तरमीमात 180 दिन तक भारत आ रहे गैर मुल्की अफराद को मुल्क में अपने क्याम में तौसी की ख्वाहिश की सूरत में उन अफराद के वीज़े की मुदत खत्म होने से पहले रजिस्टर करने को मुमकिन बनाती हैं। वजारत दाखिला ने इमिग्रेशन और गैर मुल्की अफराद से मुतालिक तरमीमी जाब्तों 2026 को नोटिफाई किया है, जिसमें इमिग्रेशन और गैर मुल्की अफराद से मुतालिक जवाबित 2025 के तहत रजिस्ट्रेशन की मुदत और अपील मैकेनिज्म में अहम तब्दीलियां मुतारिफ कराई गई हैं। जाब्तों में पहली मरतबा ऑनलाइन अपील निज़ाम को जोड़ा गया है। किसी ऑर्डर से मुतासरा कोई शख्स अब ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के कमिश्नर के पास ऑनलाइन अपील दाखिल कर सकता है। ऑर्डर मौसूल होने के 30 दिन के अंदर अपील दाखिल करना लाजमी होगा। कमिश्नर को 60 दिन के अंदर मुतल्लिका फरीकों को सुनना और मामले को हल करना होगा। भारत ने फिजा से ज़मीन पर वार करने वाले अंदरून मुल्क तैयार करदा रुद्रम 2 मिज़ाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। दिफाई तहकीक व तरक्की की तंजीम DRDO और भारतीय फिजाइया की जानिब से सभी अहम निज़ाम की सलाहियत को कायम रखते हुए ये आजमाइशी तजुर्बा किया गया। वजारत दिफा ने कहा कि इन मिज़ाइल को पहले से तयशुदा निशाने की जानिब दागा गया। चांदीपुर में मरबूत टेस्ट रेंज पर नसबशुदा मुख्तलिफ आलात की जानिब से परवाज से मुतालिक डेटा में इस बात की तस्दीक की गई है कि इस आजमाइशी तजुर्बे के सभी मकासद हासिल कर लिए गए हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने DRDO, भारतीय फिजाइया, दिफा से मुतालिक सरकारी कंपनियों, शराकत दारों और सनतकारों को इस उसूलियाबी पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि इस कामयाब आजमाइशी तजुर्बे से अंदरूनी मुल्क तैयार करदा दिफाई टेक्नोलॉजियों की बढ़ती सलाहियत का इजहार होता है और जदीद हथियार निज़ाम के सिलसिले में आत्मनिर्भरता की जानिब ये अहम कदम है। प्रसार भारती के डिजिटल प्लेटफॉर्म वेव्स OTT ने नवंबर 2024 में अपने आगाज के बाद से दो साल से भी कम वक्त के अंदर 1 करोड़ रजिस्टर्ड सारिफिन से तजावुज कर लिया है। इत्तलात नशरियात की वजारत ने कहा है कि इस संगी मील से अंदरूनी मुल्क डिजिटल प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा अख्तियार किए जाने की अक्कासी होती है, जो नाजरीन को काबिल भरोसा और मुख्तलिफ तरह का मवाद फराहम करता है। 1,40,00,000 से ज्यादा डाउनलोड्स के साथ अब वेव्स OTT कंटेंट के सिलसिले में शराकत दारी को वसत देने, इलाकाई और तालीमी मवाद को मुस्तहकम करने और मार्च 2027 2 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स के निशाने को हासिल करने के पर तवज्जो मरकूज कर रहा है। इस प्लेटफॉर्म पर 24,000 से ज़्यादा कंटेंट टाइटल्स, 15,000 घंटे से ज़्यादा कंटेंट, 140 से ज़्यादा लाइव टीवी चैनल्स और 200 से ज़्यादा रेडियो खिदमात दस्तियाब हैं। यकसा अदायगी के निज़ाम UPI ने पिछले महीने 23 अरब 20 करोड़ मालियत के माशी लेन देन का इंदराज किया है। मालियाती खिदमात के महकमे ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में डिजिटल अदायगियों को अपनाने पर शहरियों का शुक्रिया अदा किया है। रूस की जानिब से यूक्रेन की राजधानी कीव और दीगर यूक्रेनी शहरों पर रात भर किए गए ड्रोन और मिजाइल हमलों में कम अज कम 21 शहरियों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि इन हमलों में शहरी बुनियादी ढांचे और तवानाई के मराकिज को निशाना बनाया गया। जनाब जेलेंस्की ने अमरीका से मजीद पेट्रियट फिजाई दिफाई मिजाइलें फराहम करने की दरख्वास्त की। इस दौरान रूस की वजारत दिफा ने कहा कि ये हमले यूक्रेन की जानिब से किए गए हमलों के जवाब में किए गए हैं। रूसी वजारत दिफा ने दावा किया कि सभी तयशुदा ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। आलमी मौसमियाती महकमे WMO ने सख्त इंतबाह जारी किया है कि एल नीनो का मौसमी निज़ाम तश्कील पा रहा है और तवक्को है कि ये इस साल दुनिया भर में शदीद मौसमी हालात पैदा करेगा। मौसमियाती इदारे के मुताबिक इस बात का 80% इम्कान है कि एल नीनो का मौसमी निज़ाम इस साल जून और अगस्त के दरमियान पैदा होगा और नवंबर तक बरकरार रहेगा। साइंसदानों का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली इसके असरात को मजीद शदीद बना देगी। हुकूमत ने फैसला किया है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI को मरहलेवार तरीके से ख़त्म करके उसकी जगह प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स PPI का जामे निज़ाम मुतारिफ कराया जाए। ये फैसला मुल्क के फरात ज़र और कीमतों से मुतालिक आदाद व शुमार के निज़ाम को जदीद बनाने और उसे आलमी बेहतरीन तरीक़ों से हम आहंग करने के लिए किया गया है। ख्वातीन क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान जारी सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 बैनुल अक्वामी मैच आज रात इंग्लैंड के टोंटोन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। भारत ने चेम्सफोर्ड में खेला गया पहला मैच 38 रन से जीतकर और इंग्लैंड ने ब्रिस्टल में खेला गया दूसरा मैच 26 रन से जीतकर सीरीज को बराबरी पर ला खड़ा किया है। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने CBSE की जानिब से ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के लिए खिदमात की दस्तियाबी की जांच के सिलसिले में पैनल तश्कील दिया है। हुकूमत ने लोखंडे प्रशांत सीताराम को CBSE का चेयरपर्सन मुकर्रर किया है। भारत ने नेपाल के साथ बाहमी मामलात के हल के लिए किसी तीसरे फरीक की शमूलियत को मुस्तरद कर दिया है। भारत ने फिजा से ज़मीन पर वार करने वाले अंदरूनी मुल्क तैयार करदा Rudram-2 मिज़ाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म ने अपने आगाज़ के 2 साल के अंदर अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा सारिफिन का संगे मील पार कर लिया है। यूक्रेन में रूसी हमलों में 21 अफराद हलाक हो गए हैं और ख्वातीन क्रिकेट में आज रात टोंटोन में तीसरे और आखिरी T20 बैनुल अक्वामी मैच में भारत का मुकाबला मेज़बान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
4: ngaji akashwani lenish winjiktain chane shutsot rgudang phet chado Gazete şu tut, şu tutupa, namgelan şuktan, çırıngan şu kesel kani junglurek, sançesla bulun.